सुप्रभात, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आज का दिन है मंगलवार, सक संवत 1948, भद्रपद माह की 27वीं तिथि और अंग्रेजी वर्ष 2026 की सितंबर माह की 8 तारीख है। और मैं मनाली आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारे आज के इस पहली सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आए दिन की शुरुआत करते हैं हिंदी समाचार के साथ, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं हमारे आज के इस पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 6:10 पर हम आनंद लेंगे कार्यक्रम भक्ति गीतों का, 6:30 पर सुनेंगे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स के कार्यक्रम, 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। इसके पश्चात जानेंगे आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें 7:05 पर, और 7:30 पर स्वस्थ पर आधारित कार्यक्रम में हम सुनेंगे प्रस्तुतकर्ता जुदित एल रांगचल द्वारा अतिथि डॉक्टर जुबिली डार्नी से अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन पर बातचीत।

8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत और 8:30 पर हम सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। 8:40 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरों की रंगोली और 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पूर्व आंचलिक बातोरी।

स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के तहत खेलमा कार्यक्रम में हम सुनेंगे रंगलेन थेगो की और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ खेलमा लोकगीत। समय रहेगा 9:15। 9:25 पर रांखोल कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ रांखोल भक्ति गीत लोमी रांखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में। 9:35 पर जयंती कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ जयंती भक्ति गीत, गायक कलाकार रहेंगे मलाम भलंग फ्रेंगे और उनके साथी। और 9:45 पर ब्याते कार्यक्रम में हम सुनेंगे नुनकिमी ब्याते और उनके साथियों के गाए कुछ ब्याते भक्ति गीत।

सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे मिड डे न्यूज। तत्पश्चात 2:15 पर दोपहर समाचार। 2:30 से लेकर शाम 5 बजे तक एक बार फिर हम सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और इसी बीच हर घंटे सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, ये थी हमारे आज के इस पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए अब बढ़ते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम की ओर और आनंद लेते हैं कुछ प्यारे भजनों का।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए भक्ति गीतों का एक कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे महिलाओं से आधारित कुछ प्यारे गीत। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स का एक कार्यक्रम।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जाएगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विशाल परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल परिषद की बैठक में ये मंजूरी दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मैरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय कंपनियों से की जाएगी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध हैं। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघी ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। 6G नेटवर्क के विकास और वैश्विक पहल में भारत अब अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने अमरीकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिलों में शामिल हैं। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में भावना और पूजा का सामना चीन से होगा। भारत की पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में स्लोवाकिया से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए अब हम सुनते हैं हमारा आज का पोएम ऑफ द डे।
3: नमस्ते, मेरा नाम आराध्या थापा है। आज मैं डॉक्टर परशुराम शुक्ला के द्वारा लिखित कविता को सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम है नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे कोमल कुसुम समान, इनके खिलने से महकेगा सारा हिंदुस्तान। भोली भाली प्यारी सूरत, अमृत सी मुस्कान, पल में रूठे पल में माने करे ना ये अभिमान। मीठी मधुर तोतली वाणी में है कितना ज्ञान, निर्मल किलकारी पर इनकी ईश्वर भी कुर्बान। बच्चे होते सबसे अच्छे वे अमूल्य वरदान, जो आगे चलकर रखते हैं देश धर्म का मान। ये भारत के भाग्य विधाता, ये भारत की शान, इनके खिलने से महकेगा सारा हिंदुस्तान। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम आज के दिन की ओर और जानते हैं आज 8 सितंबर के दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं, महान विभूतियों की जयंतियों और पुण्यतिथियों तथा अन्य विशेष अवसरों के बारे में।

सबसे पहले जानते हैं आज 8 सितंबर के दिन घटे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। सन 1864 में जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। एटी मार्शल ने सन 1899 में रेफ्रिजरेटर का पेटेंट करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 को बॉम्बे अब मुंबई स्थित में भारत छोड़ प्रस्ताव पारित किया था। जिनेवा में सन 1952 को कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूनेस्को ने सन 1966 में लिटरेसी डे मनाने की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने 2008 को भारत अरबपति लक्ष्मी मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की थी।

अब जानते हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम जिनका आज 8 सितंबर के दिन जन्म तथा निधन हुआ था। हिंदी के यशस्वी कहानीकार राधा कृष्ण का जन्म सन 1910 को हुआ था। गीतकार, संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका का जन्म आज ही के दिन साल 1926 को हुआ था। 20 भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाना गा चुकी आशा भोसले का जन्म सन 1933 को हुआ था। स्वीडिश डीजे अविची का जन्म आज ही के दिन साल 1989 में हुआ था। साल 2002 में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर लॉरी विलियम्स का जन्म हुआ था। सन 1960 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य फिरोज गांधी का निधन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति और राजनीतिज्ञ रामभूलचंद जेठमलानी का निधन आज ही के दिन साल 2019 में हुआ था। आज ही के दिन साल 2022 में क्वीन एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी का निधन हुआ था। वे 6 फरवरी 1952 से वर्ष 2022 में अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल प्रजाभूमियों की महारानी थी।

ज्ञान वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को नई दिशा देता है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साक्षरता के महत्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से हुई। वर्ष 1965 में ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन में निरक्षरता की समस्या पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके बाद यूनेस्को ने वर्ष 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया और वर्ष 1967 में इसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता नहीं बल्कि व्यक्ति के अधिकार, सम्मान, आत्मनिर्भरता और विकास का आधार है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने, सही निर्णय लेने तथा समाज में जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने की शक्ति देती है। आज भी दुनिया के अनेक लोग शिक्षा और साक्षरता से वंचित हैं। इसीलिए बच्चों के साथ साथ महिलाओं, वयस्कों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक शिक्षा पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस वर्ल्ड लिटरेसी डे पर हम शिक्षा की रोशनी को हर घर तक पहुंचाने में अपना योगदान दें, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है पर एक शिक्षित समाज पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकता है।

तो श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ ही हम समाप्त करते हैं आज के दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब हम सुनते हैं कुछ प्यारे फिल्मी नगमे।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गाने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।

आपके गीत। दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम बढ़ते हैं स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं प्रस्तुतकर्ता जुदित एल रांगचल द्वारा अतिथि डॉक्टर जुबिली डारनी से अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन पर बातचीत।

0: नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं 100.2 FM पर आकाशवाणी हफलो। मैं हूँ आपकी दोस्त जिदित और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है, हम बीमारी ही बोल सकते हैं, हर किसी को हो सकता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशंस। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें साझा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर जुबली डारने, जो है एक साइकेट्रिस्ट हाफलॉन्ग सिविल हॉस्पिटल डिमाहासाओ में। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो पर।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: एंग्जाइटी और डिप्रेशंस के पहले हम आपको पर्सनल बात पूछना चाहेंगे कि बहुत सारा डॉक्टर्स है, तो आपने ये साइकेट्रिस्ट ही क्यों चूज किया?
1: एक्चुअली मेरा पहले से बहुत ही इंटरेस्ट था न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी को लेके। जब
0: जी
1: मैं छोटी थी, मुझे सोचने का बहुत मन करता था। जब मैं लोगों को देखती थी, मुझे ये जो बिहेवियर होता है बा दूसरों के मन में क्या चल रहा है, ये चीज मुझे जानने का बहुत इंटरेस्ट था
0: हाँ
1: पहले
0: हाँ
1: से।
0: हाँ
1: तो जब मैंने MBBS किया, MBBS के बाद मैंने रूरल सर्विस किया था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम किया था। तब
0: जी
1: मैंने बहुत ऑल काइंड्स ऑफ केसेस मैंने एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू गो फॉर साइकेट्री, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूजली बाई चॉइस लेना चाहिए।
0: जी
1: सो नॉट मेनी पीपल वॉन्ट टू बिकम साइकेट्रिस्ट, बट फॉर मी दिस वॉज द ओनली थिंग आई वॉन्टेड।
0: हाँ, आपको हम एक सवाल पूछते हैं कि ये एंजाइटी और डिप्रेशंस, नॉर्मल सैडनेस, जो हम दुखी होते हैं, इसका अंतर क्या होता है?
1: देखो, सैडनेस बोलने से ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशनल रिएक्शन है। मतलब बोल सकते हैं कि सैडनेस नॉर्मल चीज़ है। जब कुछ होता है जो हमें दुख होता है, जो दुख फीलिंग्स होता है, खुशी दुख, ये सब नॉर्मल फीलिंग्स है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन, इन लोगों को डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसऑर्डर का मतलब जब ये बीमारी बन जाता है, जब हमें हम लोगों का जो नॉर्मल लाइफ होता है उसको खराब कर देता है, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम कर देता है, तब उसको हम लोग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हम लोग आज एक एक करके डिस्कस करेंगे एंग्जाइटी क्या होता है,
0: जी
1: डिप्रेशन क्या होता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि आजकल ये सबसे मोस्ट कॉमन
0: हाँ
1: मेंटल
0: हाँ
1: हेल्थ डिसऑर्डर्स
0: जी
1: हो रहे
0: जी
1: हैं।
0: हाँ
1: एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आर आजकल के इमर्जिंग डिजीजेस है।
0: जी
1: वर्ल्ड वाइड ये इमर्जिंग ट्रेंड आ रहा है। कुछ कुछ बीमारी ऐसे है जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होता है,
0: हाँ
1: ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी उसके अंदर ही गिरता है। तो ये सब कॉमन हो रहे हैं।
0: जी जी तो ये जो सबसे कॉमन कॉज क्या हो सकता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन?
1: एंग्जाइटी और डिप्रेशन बोलने से ये सब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली उसके 4 to 5 पॉइंट्स बहुत कॉमन हैं। जैसे कि हम लोग का चेंजिंग लाइफस्टाइल
0: हाँ
1: एनवायरनमेंट,
0: हाँ
1: एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे अभी कॉमन है वैसे पहले शायद नहीं था। वो एक एनवायरनमेंटल फैक्टर हो सकता है। एक है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो हम लोग का पर्सनालिटी कैसा है। कोई कोई होते हैं जो थोड़ा इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कोई कोई जल्दी ब्रेक डाउन करते हैं, बा कोई कोई बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं, मतलब हमारा जो पर्सनालिटी टाइप। और एक हो सकता है सोशल इंटरेक्शन, जैसे कोई किसी का सोशल सर्कल बहुत स्ट्रांग होता है, कोई कोई का इतना स्ट्रांग नहीं होता है, बा फिर बहुत कम सोशल कॉन्टेक्ट रखते हैं। फिर हो सकता है हमारा जेनेटिक्स, जैसे
0: हाँ
1: कि अगर हमारे फैमिली में कोई किसी का एंग्जाइटी डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर का कोई हिस्ट्री है या किसी ने सफ़र किया है, तो हम लोग भी वल्नरेबल है तो ऐसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के लिए।
0: तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है और ये एंग्जाइटी है? हमें कैसा पता चलेगा
1: यस,
0: खुद को?
1: लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस तो होते रहते हैं, बहुत कुछ इवेंट्स होता है, चेंज होते रहता है लाइफ का स्टेजेस। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स होना, एंग्जाइटी के सिम्टम्स होना बहुत कॉमन है। कभी हम लोग स्लीप खो जाते हैं, कभी बहुत रोते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं, कभी किसी से बात करने का मन नहीं करता है। लेकिन हम लोग का जो नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है उससे उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। जो नॉर्मल अगर ह्यूमन इमोशनल रिएक्शन बोलोगे उससे वो इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन हुआ, डिसऑर्डर हो गया, लाइफ इफेक्ट हो जाता है। नॉर्मली हम लोग जो करते हैं एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाते हैं, हम लोग का पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो जाता है, वर्क लाइफ इफेक्ट हो जाता है, फैमिली लाइफ इफेक्ट हो जाता है, लोग नोटिस करने लगते हैं, जैसे कि ऑफिस में अगर आप काम करते हो तो आपके काम में कमी हो जाती है, लोग कंप्लेन करना शुरू करते हैं, अगर आपका स्पाउस है, बच्चे हैं, तो वो लोग भी आपको देख के डिफरेंट फील करेंगे, बा आपको नोटिस करेंगे कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत चेंजेस हो रहा है. सो हर वॉक्स ऑफ लाइफ में वो इफेक्ट हो जाता है, तो हम लोग को नॉर्मल नहीं फंक्शन कर पाते हैं. तो इसीलिए ये सब डिसऑर्डर होते हैं और इन लोग को ट्रीट कराना चाहिए अगर ये सब सिम्टम्स होता है तो.
0: ये सबसे जरूरी बात है कि अगर ऐसा होता है कि नॉर्मली जो नहीं होता है तो इट्स बेटर कि डॉक्टर के पास जाए. yes. और ये लेकिन हम सबसे क्या डरते हैं कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो हम मानते हैं कि वो थोड़ा साइको टाइप का, ऐसा हमारा मानना होता है.
1: इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा मतलब किसी के ऊपर धब्बा लगाना, बस लेबल करना कि ये आदमी तो साइकेट्रिस्ट का दवाई खाता है, कुछ साइको प्रॉब्लम होगा. तो ये चीज, ये पुराने जमाने का आइडियोलॉजी है. आजकल हम लोग ये टर्म यूज नहीं करते हैं, इसको ऑब्सोलीट माना जाता है. जो मेंटल बोलो, साइको बोलो. तो एक मूवी भी निकला था मेंटल है क्या बोल के, तो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने उसको अपोज किया था. तो बाद में उस मूवी का नाम चेंज हुआ है जजमेंटल है क्या. सो ये जो मेंटल है, साइको है, आजकल ये टर्म्स हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए. सो जो हम लोग जो यूजुअली जो साइको बोलते हैं, बा साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, वो दो टाइप के होते हैं. एक है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर और बाकी है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर. तो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर बोलने से मैं कुछ डिजीजेस का नाम बोलती हूँ. जैसे आपने बोला था एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जो वर्ल्ड में सबसे कॉमन है. एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उसके अंदर आता है पैनिक डिसऑर्डर, फिर आता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिर सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियसिस. तो ये सब बहुत सारा डिसऑर्डर्स है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स में. और एक होता है सीरियस मेंटल डिसऑर्डर. सीरियस मेंटल डिसऑर्डर में एक बीमारी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्किजोफ्रेनिया. मैंने हम लोगों ने देखा होगा रास्ते में कोई पर्सन वॉक कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, एकदम निग्लेक्टेड है, सेल्फ केयर नहीं है. तो जो वंडरिंग होमलेस पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली वो स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं. और कभी कभी स्किजोफ्रेनिया जो है ये क्रॉनिक है और कभी सीरियस भी हो जाता है. इसीलिए इन लोग को हेलुसिनेशंस बोलते हैं, इन लोग को आवाजें सुनाई देता है, कुछ कुछ दिखाई देता है. तो इसी के इन्फ्लुएंस में ये लोग कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर कर लेते हैं. तो इसीलिए इसको साइकोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसमें रियलिटी के साथ जो कॉन्टेक्ट है कभी कभी वो चला जाता है. तो ये एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है. लेकिन कुछ कुछ डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी. एपिलेप्सी जो हमारे दिमाग हासाओ में भी बहुत कॉमन है, बट स्टिल ये जो बीमारी है इट इज बहुत सारा इसके साथ मिथ्स जुड़ा हुआ है अभी भी. और एक होता है डिमेंशिया. डिमेंशिया मतलब मेमोरी डिसऑर्डर, जो 60s में यूजुअली शुरू हो जाता है. और कुछ कुछ बीमारी है बच्चों में, जो जैसे स्कूल गोइंग किड्स में बोलने से ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है. फिर एक होता है ऑटिज्म. तो ऑटिज्म आजकल बहुत इंक्रीज हो रहा है, ऑटिस्टिक बच्चे हो रहे हैं ज्यादा. और एक होता है कंडक्ट डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जो बाद में जाके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन सकता है. तो ये कॉमन डिसऑर्डर्स है. और एक होता है एडोलेसेंस में. एडोलेसेंस में बहुत सारे लड़कियों में ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है, जिसमें बुलीमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये सब होता है. और लड़कों में बोलने से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, इट कैन बी अल्कोहल, गांजा हो सकता है, एनी काइंड ऑफ टेबलेट्स बा डेंड्राइट्स, ये सब जो कुछ भी जो वो लोग स्मोक करते हैं. तो बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं. एंड आजकल के इमर्जिंग डिजीजेस में से बोलने से गैम्बलिंग डिसऑर्डर एंड इंटरनेट एडिक्शन. और लड़कियों का काउंटर पार्ट है कंपल्सिव शॉपिंग डिसऑर्डर. सो ये सब जो डिजीजेस होते हैं आजकल कॉमन हो रहे हैं. लेकिन लाइक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का ये एक चीज है कि वो रीजनल वेरिएशन होता है. जैसे इन कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि हम लोग का सोशियो कल्चरल थोड़ा अलग है कंपेयर टू वेस्टर्न, हम लोग का बीमारी और उन लोग का बीमारी थोड़ा डिफरेंट होता है. लाइक हियर जैसे मैंने बीच में मेंशन किया था सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर और डिप्रेशन जो होता है. डिप्रेशन इज 1/4 लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन वुमेन एवरी दिस रीजनल एरिया ना हम लोग का ये साइड में. द वे वी एक्सप्रेस डिप्रेशन इज वेरी डिफरेंट. तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई औरतें मिलती है हमें पेशेंट्स जो बहुत सालों से उन लोग का पेन होता है बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट जगह में पेन होते रहता है, कंप्लेन्स होते रहता है. वो लोग चेकअप करते हैं, कुछ रिपोर्ट में नहीं निकलता है, लाइक ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन कमजोरी होते ही रहता है, कुछ भी बीमारी नहीं निकलता है. सो ये सब लॉन्ग टर्म डिप्रेशन बस सोमाटाइजेशन के वजह से भी होता है. सोमाटाइजेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसमें मतलब वो लोग उन लोगों का जो साइकोलॉजिकल पेन है उसको फिजिकल पेन में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये सोमाटाइजेशन बहुत कॉमन है एंड स्पेशली जब हम लोग गांव में जाते हैं बा थोड़ा इंटीरियर एरियाज में, जब हम लोग स्पेशली फीमेल्स के साथ बात करते हैं बा उनका कंप्लेंट्स बा जो डॉक्टर लोग ट्रीट करते हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता डिप्रेशन क्या है. वो लोग खाली बोलते हैं कि बदन में ताकत नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता. तो ये सब चीजें जो वेग सिम्टम्स होते हैं ये इट गोज टूवर्ड्स सोमाटाइजेशन बाय डिप्रेशन. बट जब हम लोग वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो उन लोग का डिफरेंट है, जैसे कि इंटरनेट यूज एडिक्शन, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग बा ये सब, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये सब प्रॉब्लम्स.
0: और आपने बोला कि सोशल मीडिया या मोबाइल फोन, आजकल के बच्चे जो ऑटिस्टिक भी बहुत कॉमन हो गया है आजकल, तो कितना तक ये कंट्रीब्यूट करता है एंजाइटी और डिप्रेशन को?
1: सो एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसे मैंने बोला था उसका कॉजेस क्या होता है, जैसे कि उसका साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, सोशल इमोशनल कंपोनेंट एंड लाइक दिस साइकोलॉजिकल पार्ट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है हम लोगों ने कोविड में देखा, हम लोग का सोशल इंटरेक्शन, तो उसके वजह से कोविड ऐसा टाइम था जिसमें बहुत सारा साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बाहर में निकला. जी, जी. तो दिस इज बिकॉज कि हम लोग को एंजाइटी डिप्रेशन बोलने से हम लोग का जो सोशल कैपेसिटी है, सोशल इंटरेक्शन है, वो कम हो गया है. पहले जैसा जैसे हम लोग लेटर्स लिखते थे, एक्सप्रेस करते थे, वो सब चला गया है. नाउ वी आर चैटिंग ऑन द इंटरनेट इन सोशल मीडिया, वी डू नॉट नो हुम वी आर टॉकिंग टू. सो वो डेप्थ नहीं है, वो इंटरेक्शन कम हो गया है, वी डू नॉट हैव एक्चुअल सोशल सर्कल. इसीलिए हम लोग जो रियल फ्रेंड्स होता है वो कम हो गया है. लाइक मैंने बोला था कि साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट इज इम्पोर्टेंट, सोशल इमोशनल. जैसे कि कोई डिप्रेशन से सफर कर रहा है उसका अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट अच्छा है, इट इज वेरी बेनिफिशियल टू दैट पर्सन. बट यू कैन इमेजिन जिसका डिप्रेशन हो रहा है ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, कोई भी नहीं है उसका बात सुनने के लिए, कोई उसका हेल्प करने के लिए नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट हिज डिसऑर्डर. तो उसके लाइफ में बहुत ये इन्फ्लुएंस होगा. वी आर इन्वेस्टिंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, मैंने साइकोलॉजिकली इट इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे कि हम लोग का स्ट्रेस कोपिंग कुछ हेल्प करेगा बा हाउ टू डील विथ रियलिटी. आवर एक्सपेक्टेशंस आर गोइंग एरे. इसीलिए आई थिंक नाउअडेज जो जेनरेशन आ रहा है दे आर एक्सपोज टू सोशल मीडिया इन एट अ वेरी अर्ली एज. इंटरनेट अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं दे आर यूजिंग फोन्स फ्रॉम वेरी यंग एज एंड स्टडीज हैज शोन दैट दीस जेन ज़ी दे हैव द हाईएस्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज. सो ये बढ़ते रहेगा with the generation and all and it is because of our lifestyle, because of how we use social media, how the social interaction.
0: मोस्टली आजकल हमें देखने को मिलता है कि टीन एज के बीच में ये जो वर्ड्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन से ये बहुत ज्यादा हो गया है. इसका सबसे बड़ा कॉज शायद मीडिया ही हो सकता है.
1: यस समटाइम्स ऐसे समझ में आता है कि डिप्रेशन इज वेरी कॉमन बट समटाइम्स इट कैन बी ओवर यूज्ड. तो एवरीथिंग इज नॉट डिप्रेशन. डिप्रेशन का क्राइटेरिया होता है, उसका टाइम पीरियड होता है उसका डायग्नोसिस फुलफिल होने के लिए. कुछ कुछ सिम्टम्स है जो उसको डिप्रेशन बोलने के लिए एंड डिप्रेशन बहुत सारे कारण के लिए होता है और बहुत टाइप्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं. एक होता है जो रिएक्टिव डिप्रेशन, जैसे कि कुछ बहुत शॉकिंग हुआ है सडनली जो आप इमोशनली हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो वो कुछ चीज के वजह से आपने रिएक्ट किया और वो रिएक्टिव डिप्रेशन हुआ है। डिप्रेशन इट कैन बी अ पार्ट ऑफ मूड डिसऑर्डर, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर में जहाँ पे मूड अप और डाउन होता है, जैसे जो डाउन वाला पार्ट है वो डिप्रेशन है, अप वाला पार्ट है मेनिया है। तो मेनिया एंड डिप्रेशन शायद बाइपोलर पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। डिप्रेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ अ अंडरलाइंग मूड डिसऑर्डर। और एक होता है एटिपिकल डिप्रेशन, जो बच्चों और स्पेशली एजड लोगों में होता है। इसमें टिपिकल डिप्रेशन नहीं दिखता, जो डिप्रेशन में जो सैड होता है, जो बात करना नहीं चाहते हैं, वो थोड़ा अलग होता है। जो चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, इरिटेबिलिटी होता है, रेस्टलेस होता है। और एक ऐसा डिप्रेशन भी होता है जिसमें विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी रीजन, कभी कभी कोई कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, मेरे लाइफ में तो कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, मुझे मेरा लाइफ तो सब कुछ अच्छा है, कुछ स्ट्रेस भी नहीं हो रहा है, फिर भी मेरा ये प्रॉब्लम्स है, जो पूरा डिप्रेशन में फिट करता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है। कुछ कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसे है, लेकिन वो दूसरे डिसऑर्डर्स में गिरते हैं, जैसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, या तो बिरीफमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसे जो बोलने से सब कुछ डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली डिप्रेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ सिम्टम्स आ रहा है डिप्रेशन का, तो आपको दिखाने से अच्छा है आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। वो एक पर्सनालिटी प्रॉब्लम के वजह से हो सकता है, अंडरलाइंग मूड डिसऑर्डर के वजह से हो सकता है, या दूसरा कुछ ट्रॉमा के वजह से हो सकता है। तो दिखाना अच्छा है एक बार कंसल्टेशन लेने से, ताकि आपका डायग्नोसिस हो
0: जी।
1: क्योंकि सीवियर डिप्रेशन बहुत ही क्रिटिकल है। जब सीवियर डिप्रेशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं, सो किसी को ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहिए कि नहीं, ये तो फेक कर रहे हो, तुम्हारा डिप्रेशन जेन्युइन नहीं है।
0: तो आप लोग जब डायग्नोज करते हो, तो सबसे पहले आप लोग का एडवाइस क्या होता है?
1: पहले हमें पूरा हिस्ट्री सुनना पड़ता है। सबसे पहले पेशेंट का क्या कंप्लेन है, कितने दिन से है, क्या क्या सिम्टम्स हो रहा है। तो साइकेट्री में हम लोग बहुत टाइम लेते हैं पेशेंट के साथ बात करने के लिए। उसका फैमिली के बारे में पूछते हैं, उसके घर के बारे में, सिचुएशन के बारे में, हम लोगों को पूरा हिस्ट्री लेना पड़ता है। उसके बाद डायग्नोसिस में आते हैं कि उसका सब कुछ पकड़ के जोड़ के उसका क्या बीमारी हो सकता है। और सबसे पहले उसका डायग्नोसिस करने के बाद हम लोग उनको साइको एजुकेशन बोलते हैं, बीमारी के बारे में उसको और उसके फैमिली मेंबर को समझाते हैं कि ऐसा बीमारी है, ऐसा ऐसा आउटकम हो सकता है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट लेना है, क्या क्या करना है, व दूसरा अगर थेरापी चाहिए तो कैसे कैसे करना है। अनलाइक अदर डॉक्टर्स, हम लोग का इतना सारा टेस्ट नहीं होता है, बट मेनली ये बात करने से ही, और फैमिली मेंबर होना जरूरी है, उसका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव डायरेक्ट फैमिली मेंबर, तो वो होने से हम लोग को हिस्ट्री मिलता है। एंड इसके ट्रीटमेंट में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होता है, फैमिली मेंबर का बहुत रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, विदाउट देम नहीं होता है।
0: जी जी, आपने हमें बहुत सारा अलग अलग किस्म का ये जो डिप्रेशन बताया आपने, तो हमारे दिमाग में सबसे कॉमन डिप्रेशन कौन सा है?
1: आई थिंक टू टाइप्स ऑफ डिप्रेशन बहुत कॉमन है यहाँ पे। एक है बाइपोलर, जो अंडरलाइंग मूड डिसऑर्डर के वजह से जो होता है वो है, और सेकंड है पर्सनालिटी प्रॉब्लम के वजह से। सो पर्सनालिटी एक ऐसा चीज है जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वंस वी आर 18 इयर्स, सबका पर्सनालिटी कुछ ना कुछ में गिरता है
0: जी।
1: जैसे ट्रेड्स होता है, कोई कोई थोड़ा नर्वस वाले टाइप होते हैं, कोई कोई बहुत ओपन वाले टाइप होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, और कुछ कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बैकग्राउंड में, स्पेशली जो टीन्स में होते हैं, 17, 18, 19, इनका जल्दी जल्दी डिप्रेशन में जाना इज़ वेरी कॉमन। एंड वो लोग कभी कभी डिप्रेशन के अंदर में व गुस्से के वजह से वो लोग सेल्फ हार्म कर लेते हैं, लाइक खुद को काटना, कुछ पी लेना, जिसके वजह से उनको हॉस्पिटल में आना पड़े, ऐसे खुद को कुछ सेल्फ हार्म कर लेना, बहुत सारा टेबलेट्स खा लेना एक साथ, या डेटॉल वेटॉल पी लेना, बा ऐसे कुछ सेल्फ हार्म बिहेवियर बहुत कॉमन होता है। कोई पेस्टिसाइड पीते हैं, कोई कोई मोर्टीन भी खाते हैं।
0: तो ये आपने बोला कि ये सब काउंसलिंग भी होता होगा?
1: यस, काउंसलिंग देना पड़ता है,
0: काउंसलिंग
1: वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट।
0: तो हमारे दिमाग साव में पर्टिकुलरली हमारे जो हाफलोंग में है ये काउंसिलर्स है?
1: देर इज नो सच ऐसे रजिस्टर्ड काउंसिलर, बट फ्रॉम एवरी स्कूल हम लोग का नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग दिया जाता है टीचर्स को.
0: ओके.
1: सो लाइफ स्किल एजुकेशन के लिए उन लोग को स्टेट लेवल में बुलाया जाता है. वन नोडल टीचर फ्रॉम एवरी स्कूल आई थिंक. तो उन लोग को चाइल्ड काउंसिलर टाइप से, जैसे कि बच्चों का अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ आइडेंटिफाई करने के लिए बा उनको ये करने के लिए, तो उन लोग को काउंसलिंग देते हैं फर्स्ट टाइम.
0: अब तक स्कूल्स या ऑफिसेस में आप लोगों ने कहीं सेमिनार्स ये सब अवेयरनेस?
1: यस वेरी मच. इवन द पुलिस डिपार्टमेंट बोलो, लास्ट वीक वी वेंट टू द कोर्ट आल्सो, क्योंकि स्टाफ लोगों का मेंटल हेल्थ ही, बहुत लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहा था. देन वी हैव आर्मी, असम राइफल, देर आर केसेस ऑफ सुसाइड देयर. एंड मेडिकल डिपार्टमेंट तो ऐसे वी यूज टू विजिट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मतलब इंस्टीट्यूशंस टू गिव अवेयरनेस टू द हेल्थ वर्कर्स, एंड ट्रेनिंग भी होता है.
0: जितना तक आपने बोला है कि ये जो मेंटल इलनेस है, जो एंजाइटी या डिप्रेशन बोले, ये क्योरेबल है मेडिसिन से?
1: See, I will not say कि ये 100% मेडिसिन से ट्रीटेबल होगा. देर आर डिफरेंट मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो. जैसे मैंने बोला था, एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होता है जो स्किज़ोफ्रेनिया जिसको बोलते हैं, तो उसमें 1/3 ऑफ द पेशेंट उन लोग का रिकवरी हो जाता है. 1/3 पेशेंट्स का काफी इम्प्रूवमेंट होता है, 70% ऐसा, और 1/3 लोगों का इम्प्रूवमेंट इतना नहीं होता. तो देर आर फर्दर ट्रीटमेंट, जैसे कि हम लोग मेडिसिन जो देते हैं अगर वो एकदम फेल होता है तो लास्ट में वी गो फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी. तो ये सब है. अभी वेस्ट नया नया स्टडीज में वी हैव ट्रांसमैग्नेटिक स्टिमुलेशन, वो सब तो बहुत ऊपर लेवल का ट्रीटमेंट है विच वी कैनॉट अफोर्ड. इट्स अवेलेबल ओनली इन एम्स दिल्ली, सो वी आर नॉट एबल टू यूज ऑल दैट. लेकिन जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स है नाउअडेज, पहले से कंपेयर करने से 1990 से अभी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आया है, एंड वी आर एबल टू ट्रीट अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. बट जैसे मैंने बोला है, ट्रीटिंग ऑफ ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, उसका फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंड जैसे मैंने बोला है, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, जैसे कि एनवायरमेंट में भी बहुत फैक्टर्स होता है. एग्जाम्पल मैं देती हूँ दिमाग हंसाओ का. नाउअडेज वी आर सीइंग अ राइज ऑफ ड्रग यूज, सो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बहुत ये है. और जहां तक मैंने देखा है कि जो ट्रीटमेंट ले रहा है बा पेशेंट्स है, जैसे कि अगर मैं गुवाहाटी में चला जाता तो मैं यूज नहीं करता, दिमाग हसाव में रहने से यूज करते हैं क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स यूज करते हैं. सो दैट थिंग ऑल्सो वी हैव टू चेंज. देन फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स कुछ कुछ बीमारियों में वी हैव टू डू पेरेंट थेरापी ऑल्सो.
0: कुछ मिथ और मिसकंसेप्शन होता है?
1: मिसकंसेप्शन साइकेट्री में बहुत सारा है. पीपल थिंक कि, मैंने स्पेशली बोला था एपिलेप्सी के बारे में, इन डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, बट द कॉन्सेप्ट इज स्टिल द सेम. सो एपिलेप्सी में कहीं कहीं पे एबनॉर्मल बिहेवियर भी होता है. लाइक द टिपिकल एपिलेप्सी वी नो, एबनॉर्मल मूवमेंट आता है. कभी कभी एबनॉर्मल मूवमेंट के साथ भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है. तो ऐसे कोई, ये हरंगजाव का ही बात है. जब मैं सिलचर मेडिकल कॉलेज में थी तो एक केस आया था हरंगजाव से, और मुझे एक साइकेट्रिक कॉल आया था. वो आईसीयू में था, वो नया नया टीचर था, उसको जॉब मिला था, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई उससे जेलस था तो उसके ऊपर जादू किया. तो वो महीने में एक दो रात इधर उधर घूमते रहता था. अमावस्या के टाइम में डायन उसको खाता था. उसके अटेंडेंट ने मुझे क्लियरली बोला ऐसे. तो मैं तो शॉक हो गई, बट स्टिल वो एपिलेप्टिक अटैक था जो एक फ्रीक्वेंसी में आता है, वंस अ मंथ. तो उस टाइम में उसका एपिलेप्सी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस ब्रेन में हेवायर हो जाता है. तो उसके वजह से सोचना समझना उसके कंट्रोल में नहीं होता. तो वो इधर उधर घूमता है, तो उसको गाड़ी ने टकरा के, मतलब उसका बहुत सारा फ्रैक्चर हुआ और वो आईसीयू में था. बट दैट वाज अ केस ऑफ एपिलेप्सी. एंड लाइक अगर लोगों को पता होता, दे कुड हैव ट्रीटेड, उसका इलाज करवा लेते. इट्स नॉट अ वेरी डरावना वाला बीमारी. सो ट्रीटमेंट कराते तो ऐसा नहीं होता. जैसे मैंने बोला था स्किज़ोफ्रेनिया में, स्किज़ोफ्रेनिया में एक टाइप ऑफ बीमारी है जिसको पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसमें क्या होता है कि जो आदमी सफर कर रहा है उसको लगता है कोई उसके ऊपर जादू कर रहा है, जेलस हो रहा है उससे, या उसका सुपर पावर कुछ है। तो ये सब जो हम लोगों को मेडिकल बुक्स में जो एक्सप्लेन करते हैं सिम्टम्स, वही चीज है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। एंड उन लोगों को लगता है कि इन एवरी कल्चर, हमारे यहाँ पे दिमाग साव में इतना सारा जाती है एंड एवरीवेयर दे बिलीव द सेम थिंग, किसी ने उसको जेलस होके उसके ऊपर जादू किया। तो इवन वेल एडुकेटेड पेरेंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल, दे स्टिल बिलीव लाइक दैट। एंड ऐसा है कि लाइक जब हम लोग कुछ बीमारी से सफर करते हैं, जैसे मेरा कुछ कैंसर हो गया या मेरा हार्ट कंडीशन हो गया, लोग आएंगे ना, सिंपथी दिखाएंगे, इमोशंस दिखाएंगे, गेट वेल सून, रिकवर। लेकिन जब मेंटल इलनेस होगा, एवरीबडी विल अवॉइड यू, लोग आपसे दूर जाएंगे, कोई आपको विजिट करने नहीं आएगा, चुप चुप के बात करेंगे। ये सब जो सोसाइटी में जो स्टिग्मा है, ये सब इसके वजह से ही, मतलब जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, उसका गैप हो गया है, बिकॉज फैमिली को शर्म आता है, उसको लेके नहीं जा सकते, लेके जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट किया तो लोग क्या बोलेंगे। तो ना उसके फैमिली कम्फर्टेबल है, ना जो पड़ोसी लोगों को उनको समझ में आता है, तो इसीलिए दे डोंट अंडरस्टैंड। जो पोर पेशेंट जो है वो बस सफर करते रहता है इन साइलेंस।
0: ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है कि वो लोग सफर कर रहे हैं, उन लोगों का भी बात नहीं, इट्स नॉट देयर डूइंग,
1: देयर फॉल्ट। हाँ वही, ये भी एक मिथ है, लोग सोचते हैं कि ये सब अपना काम कर्म के वजह से होता है।
0: हमारे श्रोताओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं वही मैसेज देना चाहूँगी, बिकॉज मेंटल हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ है। बट आप देखोगे कि आपको इतना मेंटल हेल्थ के बारे में मैसेज देना, हेल्प करना, कोई आपको इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग चुपके से डिस्कस करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंशियल अबाउट इट। सो इसीलिए बिकॉज हम लोगों का इतना सारा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर नहीं है, देर इज अ ऑनलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर 14416, वी कॉल इट टेलीमानस। तो इसमें आप डायल कर सकते हो जब भी आपका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप इमोशनली हैंडल नहीं कर पा रहे हो, फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि कोई किसी के लिए भी, एनी वन गोइंग थ्रू सम वेरी ओवरवेलमिंग सिचुएशन, आपको काउंसलिंग का जरूरत है, आपको हेल्प का जरूरत है, तो इस नंबर पे आप डायल कीजिए एनी टाइम। वहाँ पे काउंसलर्स होगा, एक ऑपरेटर आपका कॉल रिसीव करेगा, आपको पूछेगा कि आपको कौन सा भाषा में चाहिए, हिंदी, एसएमएस, बंगाली, व्हाटएवर, फिर आपको गाइड करेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकेट्रिस्ट चाहिए, काउंसलर चाहिए, सोशल वर्कर चाहिए, तो आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेगा। वो लोग एडवाइस करेंगे, बीच बीच में आपको फोन करके आपका क्या मतलब हालचाल भी पूछेंगे। तो दिस इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली जब कोविड में जब टेली कंसल्टेशन उठ गया था, तो इसी टाइम में टेलीमानस भी उठा था, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू पीपल। और ये सब ऐसा चीज है जो ओपनली कोई शेयर नहीं करता है।
0: जी जी।
1: सो इसीलिए दिस नंबर, इफ इट हेल्प्स एनीबडी, तो प्लीज स्प्रेड दिस नंबर ना, 14416।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ आकर, हमारे स्टूडियो में आकर अपना कीमती वक्त दिया और हमें बहुत कुछ सिखाया इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। आपका फिर से हम धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपनी भावनाओं को समझना, जरूरत पड़ने पर परिवार और भरोसेमंद लोगों से बात करना और समय पर विशेषज्ञ की मदद लेना बिल्कुल भी कमजोरी नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी है। आज के लिए हमें यही पे...
2: आप सुन रहे थे स्वस्थ पर आधारित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
4: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
3: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
5: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणन, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
6: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
7: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजुश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
10: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
11: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
12: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले दो दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
13: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए देशभक्ति गीतों का एक कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अब आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। दोस्तों, समय हो चला है कार्यक्रम सरों की रंगोली सुनने का, और आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे KK के गाए हुए कुछ प्यारे गीत।

दोस्तों, कीकी की आवाज़ में आप सुन रहे थे उनके गाए हुए कुछ बेहतरीन गाने, और इसी के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम सुरों की रंगोली। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पुअर आंचलिक बातोरी।

0: ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को आरंभ करते हुए सबसे पहले हम खेलमा कार्यक्रम में सुनेंगे रंगलन थे कुकी और उनके साथियों की आवाजों में कुछ खेलमा लोकगीत।
1: सन्नुन सन्दों जिला

Nando y Reina.

mano, tangrang oi li loi na sa.

Chú sao tôi nhớ con ngài nè sàn đông đi nó.

Tinggal di nak.

Nein.

दोस्तों, खेलमा कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे रेंगलन थे कुकी और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ खेलमा लोकगीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। चलिए, अब रांगखोल कार्यक्रम के तहत हम सुनते हैं लोमी रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ रांगखोल भक्ति गीत।

दोस्तों रांखोल कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे कुछ रांखोल भक्ति गीत। गायक कलाकार थे लोमी रांखोल और उनके साथी। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब जयंतिया कार्यक्रम में हम सुनते हैं मलांग भलांग प्रेंगे और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ जयंतिया भक्ति गीत।

श्रोताओं, जयंती कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मलंग भलंग प्रेमी और उनके साथियों के गाए हुए कुछ जयंती भक्ति गीत। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। चलिए ब्याते कार्यक्रम में हम सुनते हैं कुछ ब्याते भक्ति गीत। गाय कलाकार रहेंगे नुनकिमी ब्याते और उनके साथी।

0: दोस्तों, ब्याते कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे नुनकी में ब्याते और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ ब्याते भक्ति गीत। और इसी के साथ ही समाप्त होता है इस सभा के लिए स्थानीय भाषाओं का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। चलिए, अब मनोरंजन को जारी रखते हुए हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और इसी के साथ मुझे मनाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है।
2: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन, जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखती है वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखती है, जिसमें वो देखती है कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी ज़रूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ये कितनी मात्रा में है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जिंदगी के हर पड़ाव पे ज़रूरी है, तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको ज़रूरी है, आपको आपकी पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको ज़रूरी है, और आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरत क्या है।
1: तो ये बताइए कि कैसे समझें ये जो ज़रूरत होती है, एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको कितनी डाइट की ज़रूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, पोषकता की खास तौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो।
2: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके ज़िंदगी की आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज़ की किस मात्रा में ज़रूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में एक चौथाई हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
1: ऊर्जा भी देगा,
2: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपके थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज्यादा आपको लेनी जरूरी होती है,
1: वो भी मौसम के हिसाब से,
2: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्जी हर मौसम में मिलती नहीं है और हम आजकल ज्यादा कर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा एक चौथाई हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग, चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है. अगर आप दूध लेते हो तो दूध पनीर इसमें से आ जाता है. और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी फिश चिकन इसमें से आपको मिल जाता है. और जो एक चौथाई हिस्सा है इसमें आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है. ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज्यादातर सब्जियों से भर जाता है.
1: जी जी.
2: ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है. ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की जरूरतें क्या हैं, उस पे ये निर्भर करता है.
1: जी. और ये जो आपने बताई सब्जी, दो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी. यहाँ पर एक गाना जरूरी है. कौन सा गाना सुने? हमें तो लगता है कि वो सादा खाना की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ.
2: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने.
1: ज्वारभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं.
3: ये समझो और समझाओ थोड़ी में.

0: लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह. हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए.
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है. उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए. ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज्य रहे, या आप उसे खाने में ना रखें.
0: अच्छा अच्छा ओके.
1: आप ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें. जितना हो सके ये समझना लोगों को ज़रूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज़्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है. सो अगर उनके माता पिता बहुत ज़्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है. बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटी छोटे अमाउंट में खाना देना ज़रूरी है. हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज़्यादा दे रहे हैं. ये ज़रूरी नहीं है, आपके बच्चों को जितना ज़रूरी है उतना जाना चाहिए. उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाले सब्जियां हैं, फल है, वो होना ज़रूरी है. दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही ज़रूरी होता है. मतलब दाल, पल्सेस जैसे राजमा, छोले, पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना ज़रूरी है. ये वही वक्त है ज़िंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है. और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं. जो पहले के ज़माने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं. आज कईयों के पास वो नहीं है साथ. जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहाँ पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते कि ये दू ये नहीं दू, ये सही है ये गलत है. इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान देखना ज़रूरी है. वैसे ही अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है. तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना ज़रूरी है. जितना बचपन में खाना ज़रूरी है उतना बुज़ुर्गों के लिए भी खाना ज़रूरी है. उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके. अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है. मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप बुज़ुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है. तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना ज़रूरी है. क्या फल सब्जियाँ सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना ज़रूरी है. और उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं.
0: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स. और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिल जाएंगे. तो ज़रा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाएँ वो.
1: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियाँ. और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना ज़रूरी है. जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियाँ मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी. ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं
0: जी।
1: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा, मगर मौसम के आधार पे जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है। जैसे सब्जियां हो गई तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में हम उसको जो
0: पत्ती वो वाली सब्जी,
1: पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है ऐसी वाली बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा।
0: अच्छा।
1: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंठोला आ गया, आप तो कंठोला आपको अभी मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के

0: विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गए। अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है। वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इशू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है, उसके बीज होते हैं पंपकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
1: बढ़ जाता है।
0: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल।
1: जी जी।
0: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
0: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है, जो मौसम की जो सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी, उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं।

0: और गांव में खेतों में काम करती हैं। तो इनके बारे में बताइए, क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है? कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती हैं, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं?
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे
0: जी
1: कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सकें। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से
0: शुरू हो जाना
1: संभालना
0: चाहिए।
1: चाहिए, मतलब आपके सही विटामिन्स मिनरल्स आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया थोड़ा सा उल्टी होना बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं,
0: जी
1: कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता
0: जी
1: है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले जहाँ पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही दूध सलाद ये थोड़ा सा खा ले तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं
0: जी
1: जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
0: जी ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस
1: जी
0: समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खास तौर से लड़कियों के
1: जी
0: लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो
1: बहुत
0: क्या
1: ज्यादा
0: स्पेशल कोई डाइट होती है?
1: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है।
0: जी
1: जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज़्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला हैं और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना ज़रूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए। जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत ज़रूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी ज़रूरी है और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और महावारी के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
0: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
1: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है। मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो इसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है। आपका खेल क्या डिमांड करता है, जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज्यादा करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
0: जी बिल्कुल। एक गाना सुने
1: जी,
0: कौन सा?
1: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई चक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
0: सुनते ही ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाते हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: सर, ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को IBS, IBD ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट, और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है।
0: जी,
1: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
0: अच्छा,
1: दूसरी चीज, आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा
0: जी।
1: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है ज्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती
0: जी, ब्लोटिंग होने
1: लगती बहुत ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है।
0: जी।
1: तो आपके शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है, और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपके खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
0: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है IBS, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, IBS, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाएं, और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: IBS और IBD थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है, आपको डाइटिशियन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में, कम तेल, कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो, और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
0: जी जी, बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
1: बहुत ज्यादा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, बेचैनी ज्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
0: डिप्रेशन
1: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है। जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितनी विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज सब्जी फल या कोई धान है दाल है इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
0: अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
1: नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई मुझे हर दिन का एक फल चाहिए। और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
0: जी बिल्कुल। और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं, अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
1: आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
0: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है।
1: बढ़िया,
0: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग जैसे मैंने कहा जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसकी वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है, वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपकी थाली में कितने रंग हैं, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे।
0: जी बिल्कुल।
1: आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है, तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी हैं, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं।
0: जी जी जी
1: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं, हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गर्म मसाले का पानी हो जाता है।
0: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
1: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, हम यहाँ पे 200-300 ग्राम चार लोगों के परिवार के लिए खाते हैं।
0: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके बस मसाला डाल के,
1: हाँ, और उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहां पे दिक्कत आ जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
0: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है, लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर, लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है, हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा, तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
1: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं, मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग, मगर उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
0: जी जी।
1: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
0: जी बिल्कुल।
1: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहाँ बाहर की खेल कूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स है, बस है, रिक्शा है, बाइक है। तो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1,000-2,000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना ज़रूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना ज़रूरी है। जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
0: जी, एक गाना सुने।
1: जी,
0: कौन सा?
1: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज़ नहीं है जहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो
0: ओहो
1: वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से।
0: जी,
1: तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही
0: ओहो
1: नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीज़ें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला ले लो,
0: अमरूद।
1: अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज़्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज़ है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीज़ें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे
0: आंवला,
1: आंवला एक चीज़ है। उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया, तो
0: करौंदा,
1: करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर
0: जी,
1: सकते हो।
0: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व तो किसमें होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जितनी हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं। बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
0: जी, एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत
1: वो
0: है?
1: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज़्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफ़ेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज़ कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफ़ेद नमक है, हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है। हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
0: ज्यादा
1: थाली में ज्यादा डालते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की जरूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की जरूरत है।
0: जी, जी।
1: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के, तो आराम से
0: दाल में भी बिल्कुल।
1: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं
0: जी, बिल्कुल। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

तेरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: अमर अकबर एंथनी, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में ये पेशकश आपने अभी सुनी। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

हरिहरन की आवाज में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम रंग तरंग की ये अगली पेशकश।

0: तन्हा दिल इस एल्बम से गीत अभी आपने सुना, शान की आवाज में उन्हीं का लिखा गीत और म्यूजिक राम संपत का।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: तलत अजीज की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: धड़कन, ये था एल्बम का नाम। पिनाज मसानी की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। मुश्ताक अहमद ख्याल ने इसे लिखा।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

जान मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सब

सोनू निगम की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे जान एल्बम से, फैज अनवर ने से लिखा, निखिल विनय का संगीत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे बीत भारती के कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी के हाफलूंग केंद्र है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। थोड़ी देर में सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान

0: योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए पुनः ले चलते आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं विद भारती के कार्यक्रम।

0: द ग्रेट गैम्बलर, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कंचन, मनोहर उदास और आनंद की आवाजों में ये गीत कुर्बानी फिल्म से अभी आपने सुना। इंदिवर ने इसे संगीत दिया।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

यादों की बारात, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज।

बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। आज जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिवस है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें सादर नमन।

0: आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा एआर रहमान की तर्ज।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: बाजीगर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में। रानी मलिक ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: दोस्ताना फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल संपन्न होता है।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन।
2: श्रोताओ, अभी आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी के हाफलूंग केंद्र है। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से थोड़ी देर में हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं। जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
0: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नेते और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा

0: गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 75,676 पर और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 23,662 पर था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए पुनः ले चलते आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं विद्यार्थी के कार्यक्रम।

सिलसिला फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाज़ों में, और शिव हरी का संगीत था। आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं जो पढ़ने जा रही हूं, और हाँ सवाल जवाब ज़रूर होंगे जैसा कि आपने लिखा है, लेकिन पहले इबारत के बारे में जो आपने अच्छे शब्द बहुत ही सुंदर संदेश भेजे हैं वो पढ़ देते हैं। इबारत के बारे में आप कहते हैं कि एक ऐसी इबारत है, ऐसा खामोश इश्क की कहानी है जहां नज़रों की मुलाकात, हल्की मुस्कान और अनकहे एहसास धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाते हैं। एक नज़र से शुरू हुई कहानी दिल में सपने जगा देती है, कभी तस्वीर बहाना बनती है तो कभी बारिश और शाम का मौसम मोहब्बत को और गहरा कर देता है। साथ ही इन श्रोताओं ने बहुत से गीत गेस कर लिए हैं, लिखे हैं, देखते हैं कौन कौन से गीत पूरे होते हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुगम सुखांत प्रेम कथा, इस तरह से इबारत लग रही है हमें, और यहाँ प्रिया और प्रियतम सहजता से एक दूसरे को मिल जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी रंग लाती है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ये इबारत में दो प्रेमियों के बीच पनपते प्यार की सुंदर दास्तां हैं। आपस में नजरें टकराना, बातें करना, तस्वीर खींचना, ये एहसास, यही तो जिंदगी है, और साथ में एक साथ आगे बढ़ना। और साथ ही इन्होंने कुछ गीत लिखे हैं, देखते हैं लिस्ट के साथ मेल खाते हैं कि नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सिंदूरी, मखमली, शीतल, मनोरम, उस नीरव शाम की बेला में दो अनजान दिलों के बीच की एक चुंबकीय आकर्षण इस इबारत में नजर आता है। और भी काफी कुछ उन्होंने लिखा है और बहुत ही सुंदर शब्दों में ये संदेश हम तक भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता है जिन्होंने अपना एक अनुभव साझा किया है कि शाम का समय था और शाम की हल्की हवा चल रही थी। ये बात उस समय की है जब उनकी शादी के कुछ दिन बीते थे और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ थे, और साथ ही साथ वो अजमेर से हैं लेकिन मुंबई घूमने के लिए आए थे, और मोटरबोट का सफ़र, समुद्र की लहरें, हल्की हवा, ये सब चीज़ें इबारत पढ़ते हुए उन्हें याद आ रही है। और उन्होंने इसी तरह से कैमरा निकाला और एक शानदार तस्वीर खींच ली थी जिनसे उनकी धर्मपत्नी शर्मा गई, और वो तस्वीर बहुत प्यारी है, बहुत ही यादगार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, आपके इसी तरह के जो अनुभव है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आईना बहुत सच्चा होता है मगर गुजरे जमाने के अक्स को दिखा नहीं सकता। आईना सिर्फ आज में जीता है जबकि तस्वीरें बीते लम्हों को कैद करना जानती है, और जब भी ये पन्ने पलटते हैं तो यादें खुल जाती है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत नूरी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा और खयाम का संगीत। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं।

झिझक के साथ फोटोग्राफी भी की जाती है और बेखुदी जैसे पथों पर इबारत बढ़ती चली जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। देखते हैं गीत आपकी लिस्ट से मिलते हैं या नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत तो आप जो भी सुनवाना चाहें सुनवा दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, अब इबारत के शब्दों में वो नहीं फंसेंगी। ये भी अच्छी बात है, जो जहाँ है बस उसे इंजॉय किया जाए, उसमें आनंद ढूंढ लिया जाए, ये इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं सिलसिला फिल्म के इस गीत के बारे में कि यहाँ इस गीत में लोक संगीत और पारंपरिक संस्कारों की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। ये जो गीत है ये कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश, शादियों या उत्सवों के उल्लास को बताता है। एक नववधू या प्रेमिका के मन की लज्जा व प्रेम का अनूठा चित्रण भी मिलता है इस गीत को सुनते हुए। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से आपने ये गीत सुना है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसके बारे में लिखा है। दोस्तों, इबारत को लिखते हुए और पढ़ते हुए कहीं ना कहीं एक सुकून ज़रूर महसूस होता है, तो इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में थोड़ा ठहरना भी ज़रूरी है और उस ठहराव के लिए ताकि हम फिर से अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ चलें पूरे जोश के साथ, तो ये ठहराव बहुत ज़रूरी होता है, ये पड़ाव बहुत ज़रूरी होता है शारीरिक और मानसिक सुकून के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। तो आप मुझे कमेंट में लिख भेजिए कि आपने अभी अभी हाल फिलहाल ब्रेक जिसे कहते हैं, या ये ठहराव जिसे कहते हैं, या पड़ाव जिसे कहते हैं, या अपने काम से या जिम्मेदारियों से कुछ वक्त अपने लिए निकालकर अपने आप को ताजगी से भरपूर कैसे किया, कब किया, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। साथ ही ये भारत पढ़ते हुए अगर इससे जुड़ी कुछ अनुभव है आप हमें लिख भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलते हैं इस प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत हसीना मान जाएगी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। अख्तर रोमानी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, वे तो होले से किसी तस्वीर में कैद होकर जीवन भर के लिए खूबसूरत याद बन जाते हैं। इंसान भी हवा के झोंके की तरह है, जो कभी जीवन में ना हुआ वो घटित हो जाता है। इसीलिए हर मुलाकात का सम्मान कीजिए। कौन जाने जिसे आप साधारण घटना समझ रहे हो, समय की सच्ची और खूबसूरत इबारत हो जिसे आप बार बार जीना चाहते हो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी कोई रिश्ता शब्दों से नहीं, बस एक नजर और एक हल्की सी मुस्कान से शुरू हो जाता है। कुछ मुलाकातें तस्वीरों में नहीं, दिल में कैद हो जाती है और फिर वही खामोश पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब बन जाते हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और एक नजर में दिल को अपना सा लगने लगता है। फिर उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसके साथ बिताए छोटे छोटे पल मन में एक मीठा सा ख्वाब सजा देते हैं। कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखी है गीतों की लिस्ट, जो वो कह रहे हैं कि ये शामिल हो सकते हैं गीत। उनमें से कुछ तो शामिल हो चुके हैं, कुछ अभी अभी शामिल हुआ है, अभी अभी जो शामिल हुआ है वो भी लिखा गया है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिस्ट लिख डाली है, लेकिन हमें इंतज़ार है आपके उन संदेशों का। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा कौन सा वक्त है जो आप अपने आप को सुकून देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाते हैं, ऐसे कौन से अनुभव है जो इस इबारत को पढ़ते हुए आपको याद आ रहे हैं, आप वो किससे हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने इस गीत की तरफ, देखते हैं ये गीत लिस्ट में है या नहीं। आपकी लिस्ट में

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, हीरा पन्ना फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारी श्रोता कहती हैं कि शुरू के जो दो गीत सुनवाए गए वो सुनकर एकदम आनंद आ गया है। एक श्रोता लिखती है कि ये जो गीत तस्वीर उतारता हूँ अभी इन्होंने सुना, ये मेरे ख्याल से इन्होंने पहली बार सुना है, लेकिन कैसा लगा ये गीत ये ज़रूर लिखें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ये जो गीत है ये कुछ अलग है, तस्वीर उतारता हूँ इस तरह के लिरिक्स जो हैं उन्होंने सोचे नहीं, लेकिन बहुत ही अलग तरह के लिरिक्स हैं, फिर भी बहुत ही खूबसूरत गीत है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़कर जो साथी मित्र बन गए हैं, हम उन्हें जानते हैं या ना जानते हैं फिर भी परिवार के सदस्य की तरह महसूस होता है, जिनकी तस्वीर फेसबुक पेज के माध्यम से दिल में उतर गई है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर संदेश इस गीत को मद्देनजर रखते हुए आपने लिखा है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि इबारत पढ़कर उन्हें ऐसा लगा कि मोहब्बत भी कैसी अनकही सरगम है, ना शब्द चाहिए ना कोई इकरार, बस एक नज़र काफ़ी है, और शाम की हवा में लहराती चुनरिया और आंखों में उतरता कोई अनदेखा संसार, जीवन जैसे ठहर गया हो और उस ठहराव में ही सुकून है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत प्रेम के उस एहसास को समर्पित है जो इंसान के दिल को बेखुद कर देता है और जिंदगी को सपनों तथा उम्मीदों से भर देता है। प्रेम का चरम बिंदु वो है जहां दो अलग अलग राहें बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से एक ही दिशा में बढ़ चलती है। जी हाँ बिल्कुल। साथ ही जब तस्वीर की बात चली है तो क्यों ना हम उन तस्वीरों की बात करें जो हमारे पुरानी एल्बम्स से भरी पड़ी है और उनके द्वारा हम पुरानी यादों तक पहुँच जाते हैं। तो आज जहाँ हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी बात भी है, और डिजिटलाइज हो चुका है हर चीज़, एक क्लिक में न जाने कितनी सारी तस्वीरें ले लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन उस ज़माने में जहां एक रोल में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ तस्वीरें हम ले सकते थे, एक अंक होते थे कि इतनी ही तस्वीरें आप खींच सकते हैं, और फिर इतने दिनों तक उसका इंतज़ार करना पड़ता था उन तस्वीरों को घर तक लाने में, और कैसी तस्वीर आई है, किसकी अच्छी आई है, किसकी ठीक नहीं आई है, वो सब यादें आप मुझसे साझा कर सकते हैं कि आपने वो सब तस्वीरें संभाल के रखी है, किस तरह से संभाल के रखी है, क्या उन पुरानी एल्बम तक फिर से कभी कभी बैठ कर जाते हैं, सुकून के पल बिताते हैं, देखते हैं, क्या फ़र्क है उन तस्वीरों में और आज हमारे मोबाइल फ़ोन की तस्वीरों में, लिखिए मुझे अच्छा लगेगा। अगले गीत तक पहुँचते हैं,

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, ये वादा रहा फिल्म का नाम था। गुलशन बावरा ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बस यही याद रखना चाहिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखती है कि आज मैं विविध भारती के मोबाइल पेज के पहले की फीलिंग, जो सिर्फ हम रेडियो सुनते थे, वो आजमाना चाहूंगी और बस गाने सुनना चाहूंगी पहले की तरह। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे लिए वो पल बड़े ही अनमोल होते हैं जब हम चार दोस्त मिल बैठते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, और सच कहें तो कुछ समय से मानो हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं, क्योंकि हमारे घर काम भी चल रहा है और जिन फूलों को देखकर हम सुबह मुस्कुराते हैं वो सब हमने कुछ दिनों के लिए छत पर रख दिए हैं, लेकिन अब ज़रूर मुस्कुराएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जुबां खामोश है पर दिल में एक शोर सा है, तेरी तस्वीर का जादू ढलती शाम में कुछ और सा है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ। एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुंचा है कि तस्वीर उतारने के कई साधन हैं, एक आंखों से उतारी जाती है, दूसरी मोबाइल से उतारी जाती है या कैमरे में, और तीसरी पेंटिंग के जरिए कल्पना के द्वारा उतारी जाती है या बनाई जाती है। जी हाँ, तस्वीरों की तो बहुत से साधन हैं उतारने के, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर हम यादों में जो खो जाते हैं, क्या उन तस्वीरों को सहेज के रखते हैं, वक्त मिलता है वहाँ जाकर उन तस्वीरों को देखने का, और क्या फ़र्क है उन तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में, बताएं मुझे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलशन बावरा ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। तस्वीरों की बात चली और बहुत से मैसेज मुझ तक पहुंच गए हैं धड़ाधड़ करके, और लिखते हैं कि जो बात तुझ में है वो तस्वीर में कहाँ। ये बात तो बिल्कुल सही। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत देर से फेसबुक पेज मिला नहीं, कहीं मिस हो गया था इसीलिए देर से मैसेज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप जब पहुँच जाएँ, जब मैसेज करें, हमने आपका मैसेज पढ़ दिया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अभी सिंगापुर में है और हर एक साल कहीं ना कहीं घूमने जाती हैं वो, और हर एक जगह से कुछ अच्छी अच्छी यादें लेकर आती हैं। साल भर उन यादों को सजोए हुए एक अच्छा समय बीतता है, और इस वक्त वो सिंगापुर में है। वहाँ इतने प्यारे बीच हैं और हरियाली है, जहाँ उनका मन बहुत आनंदित फील कर रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वक्त ज़रूर निकालना चाहिए कहीं निकलने के लिए। वो कहते हैं ना, ठहराव बहुत ज़रूरी है फिर से एक शुरुआत करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में पुराने और नए दोनों ही गीत बज रहे हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, दोनों ही सुनने को मिल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो पुरानी तस्वीरों वाले जो दिन थे वो बहुत बढ़िया थे। उन दिनों कैमरा एक अलग ही तरह का उपकरण हुआ करता था, और जिसमें रील होती थी, संभाल कर देख कर हम तस्वीर खींचते, और यादें एक रील में कैद हो जाती। जब रील धुलकर आती, यादें रंगों में सजकर रूबरू होती, तो बड़ा मज़ा आता, और एक तरह से जो यादें हैं उनका पुनर्जन्म होता। ये देखकर हंसते, चटकारे लेते, खिंचाई करते कि भाई किसकी तस्वीर किस तरह से आई है। वो जो पल थे वो कुछ अलग ही थे। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले तस्वीरें लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, इसलिए उनमें सब्र और यादों की मिठास होती थी। आज एक क्लिक में तस्वीर सामने आ जाती है, मगर पुरानी तस्वीरों जैसा उस पल का इंतज़ार और ठहराव कहीं कहीं बहुत याद आता है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल महाशय जो है, इंटरनेट जो है, बहुत उन्हें परेशान कर रहा है, आँख में चोली खेल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ ही लिया है हमारे इस प्रोग्राम को, और इस वक्त वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और श्रोता लिखते हैं कि आधे घंटे का सफ़र निकल चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा का सफ़र निकल चुका है, और घबराहट हो रही है कि सुरीला सफ़र में आज क्या हो रहा होगा, लेकिन अभी भी बाकी है, आप हमारे साथ बने रहें।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, खयाम का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरों की दुनिया में अगर प्रवेश किया जाए तो चाहे वो एल्बम हो या फोन, वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और हम आ चुके हैं इस प्रोग्राम के अंत तक आज के इस प्रोग्राम के समापन की ओर, तो हमें भी पता नहीं चला कि कैसे वक्त निकल गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के दौर में फिल्म या तस्वीर उतारने के लिए विशेषकर फोटोग्राफर को बुलाया जाता था, आजकल हर कोई फोटोग्राफर है, और पहले किसी विशेष अवसर पर खींची जाती थी तस्वीरें और उनकी अहमियत कुछ अलग होती थी। आजकल तो हर पल पल आप तस्वीर खींच सकते हैं और गूगल महाशय ने संभाल के रखा है इन सबको। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पुराने कैमरे को उन्होंने शोकेस में सजाकर और सहेज कर रखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि डिजिटल फोटो से हमारे वो पुराने फोटो देखने में और उसमें खो जाना उन्हें बेहद पसंद आता है। ये जरूर है कि डिजिटल फोटो को हम जूम करके देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरों को जूम नहीं कर सकते, लेकिन जो एहसास है वो तो कुछ अलग ही है। जी हाँ, एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पहले कैमरे रसायनों, नेगेटिव और रीलों पर काम किया करते थे जिन्हें बनवाने में समय लगता था। आजकल के समय में स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों से तुरंत फोटो आ जाती है और तस्वीरों को एल्बम में सुरक्षित संभाल के रखा जाता था, आजकल फ़ोन में सुरक्षित है और नेट पर भी उपलब्ध है। जी हाँ बिल्कुल, इन तस्वीरों से बाहर निकलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत इस प्रोग्राम का।

श्रोताओ, अभी आप मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं दिल्ली केंद्र से दिन के 2 बजे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर हिंदी में दोपहर समाचार।

0: उबड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए एआई सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ में इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
3: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने

0: नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
1: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
3: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में दोपहर समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए पुनः ले चलते आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और आनंद लेते हैं विद्यार्थी के कार्यक्रम का।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। 9-2-11 फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसटी बर्मन का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत पेइंग गेस्ट फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। एसडी बर्मन की तर्ज और इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत काला पानी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसटी बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस टी बर्मन का संगीत।

हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे।

तुमसा नहीं देखा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस बिल्कुल ठीक है ममता जी। अच्छा एक बात बताइए कि जब अखबार आप पढ़ती हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ती हैं अखबार में?
1: ये प्रश्न तो बहुत मुश्किल है। कई बार हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी कोई ऐसी खबर आई है जो बिल्कुल दुखद है या बहुत उस पर ध्यान आकृष्ट हो रहा है तो फ्रंट पेज पढ़ते हैं। नहीं तो मेरी आदत है मैं सबसे पहले संपादकीय वाला पेज पढ़ती हूँ। और एक जमाना था सबसे पहले अंतिम पृष्ठ पढ़ा करते थे जब प्रतिदिन कॉलम आया करता था शरद जोशी का, तो सबसे पहले अखबार का वो पलट देते थे और पीछे से शुरुआत करते थे, फिर संपादकीय वाला पृष्ठ, फिर हम फ्रंट पेज पर जाते थे। लेकिन आजकल कई बार खबरें ऐसी देखने को मिलती है, लगता है कि हाँ एक निगाह फ्रंट पेज पर डाल लो, उसके बाद संपादकीय वाले पृष्ठ पर जाना इसलिए भी अच्छा लगता है कि उसमें एक तो कई आलेख होते हैं और वो पढ़कर हमारे पास शब्दकोश का भंडारण होता है और शब्दकोश मिलते हैं, भाषा मिलती है और एक कंटेंट भी मिल जाता है, विषय वस्तु मिल जाता है।
2: कई बार ममता जी ऐसा होता है कि सब लोग जब पेपर खोलते हैं तो वो यही करते हैं कि पहला पेज देखा, उसके बाद आखिरी में चले गए और फिर बीच में आ गए, तो जो उन्हें जो जिस चीज में रुचि है तो वो चीजें वो पहले पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हम गृहणियां हैं तो हम लोग पहले देखेंगे कि आज क्या क्या उसमें कुछ अलग सी दिया गया है, व्यंजन दी गए या कहानी दी गई है, तो हम लोग उन चीजों को पढ़ना पहले पसंद करते हैं। तो
1: अपनी अपनी पसंद के अनुरूप लोग चुन लेते हैं कि कौन सा पृष्ठ पढ़ना है। और तीसरा पेज भी पढ़ना चाहिए। तीसरे पेज पर शहर की खबरें होती हैं और जब पढ़ाई के दिनों में विश्वविद्यालय की खबरें हुआ करती थी, तब तो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इंटरनेट का, सोशल मीडिया नहीं था, तो कई बार अचानक यूनिवर्सिटी बंद होती थी और तो फिर जाना ना पड़े, तो वो खबर सबसे पहले

0: देखते थे कि
1: अपने
0: एयू
1: से
0: क्लोज्ड
1: जुड़ी।
0: याद होगा,
1: जी
0: है ना?
1: अपने बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा आपने, क्योंकि जो जिस
0: हाँ
1: समय दौरान दौर में हम लोग थे, तो
0: हाँ
1: उस दौरान के समय की जो खबरें हमारे लिए जरूरी होती थी वो हम पहले ही पढ़ना पसंद करते थे, है
0: तो
1: ना।
0: एक मिनट
1: हाँ
0: इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हूँ।
1: हाँ
0: वो
1: प्लीज।
0: ये कि ये बताएं कि हमने तो अपनी बात बता दी, हमारे श्रोता बताएं कि अखबार पलटते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, और स्कूल कॉलेज के दिनों में क्या पढ़ा करते थे।
1: जी
0: अगर कोई कॉलम याद है तो उस कॉलम का जिक्र करें, जैसे हमने अभी दो कॉलम का जिक्र किया,
1: जी
0: प्रतिदिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज की खबर, कि जब दिख जाता था जैसे बहुत बदली, कुहासा छाया हुआ, घनी बदली है, ठंड से हड्डियां कपकपा रही हैं, ऐसे में लगता था अरे बाप रे, क्लासेस के लिए जाना है यूनिवर्सिटी, और घर से बहुत दूर थी,
1: जी
0: तो पन्ना पलटते थे, एयू क्लोज्ड जब आता था, आ हाँ आज तो नहीं जाना है, घर पे आराम से
1: बड़ा
0: रजाई ओढ़
1: आराम
0: के बैठना है।
1: बड़ा
0: तो
1: आराम मिलता
0: ऐसी
1: था।
0: कोई बात याद आई है अभी बातों के दौरान,
1: जी
0: तो जरूर लिखें, बहुत संक्षेप
1: बिल्कुल
0: में लिखें हमारे श्रोता, है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: और मुहावरों की दुनिया में घर घाट एक करना, यानी कि किसी भी विषय पर अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं से भी, किताबों से, अखबारों से, सब जगहों से लेना पसंद करते
0: अच्छा
1: हैं।
0: जरा बताइए,
1: तो
0: शिक्षा क्यों जरूरी
1: भाई अगर शिक्षा, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पढ़ ही क्या पाएंगे कुछ भी, हमें सब
0: है?
1: किताबें शून्य नजर आएंगी।
0: और
1: जी
0: किताबें कैसे पढ़ेंगी और करियर के लिए कैसे आगे
1: हाँ,
0: बढ़ेंगी?
1: पहले तो
0: और
1: किताबें नहीं पढ़ पाएंगे तो करियर की बात ही बहुत दूर है ना। तो ये बहुत जरूरी कि हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।
0: शिक्षा जरूरी है, क्यों जरूरी है, और साथ में अब
1: जी
0: आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, दे रहे हैं या नहीं, या बचा लिया है,
1: जी
0: खास तौर से बेटियों को कम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा भी मुद्दा
1: बिल्कुल,
0: होता है घरों में, वो भी बताएं।
1: क्योंकि आज विश्व साक्षरता दिवस भी है तो इस पर भी हम बात करेंगे। और सखी विशेष में सुरुचि वाघ Jombe.com की संस्थापक CEO हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखिए, शिक्षा की बात चल रही थी ना, शिक्षा क्यों ज़रूरी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद हम लोग आपस में ही सिखाने लग जाते हैं बच्चों को कि बोलना शुरू करे वो जल्दी से जल्दी। तो उसको छोटी छोटी चीज़ें, अक्षर सिखाने लग जाते हैं, कभी ABCD, कभी का खा गा, या उसके सामने हम दो दो अक्षर के शब्द बोलने लग जाते, कहते हैं कि बोलो बेटा, पापा, मम्मी, ऐसे सिखाते हैं ना। तो वो धीरे धीरे चल के जब बच्चा बोलने लग जाता है तो घर से सीख जाता है, और घर में ही कहते हैं कि पहली पाठशाला तो घर की ही होती है। फिर हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटे वाले स्कूल में जाए, प्ले ग्रुप वगैरह में, जहाँ पे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ज्ञान को वो उस समय के हिसाब से, आयु के हिसाब से उनको जो ज्ञान दिया जाए वो सीख सके।
1: और अभी एक तरीका और है, घर पे ही शिक्षा लेना, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करना, वो भी अपनी जगह पर। अगर किसी के पास वो सुविधा नहीं है स्कूल जाने की तो वो भी ठीक है, लेकिन जो स्कूल जाकर बच्चे सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी आचार व्यवहार, बात करना और खेल कूद के साथ जो बातों बातों में सीख जाते हैं, वो घर पे बैठे नहीं सिखा पाते हैं माता पिता अकेले। जो 30 बच्चों के साथ, 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बच्चे सीख पाते हैं, थोड़ी न थोड़ी सबसे कुछ न कुछ पाते हैं, उधार लेते हैं, तो ये सारी बातें, स्कूल की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और दरअसल शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां बटोर लेना भी नहीं होता है, परीक्षा पास कर लेना भी नहीं होता है, बल्कि ज़िंदगी को सही ढंग से सीखने की समझ भी शिक्षा से हमें मिलती है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए शिक्षा यानी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करके रहेंगे तभी तो हम आगे करियर भी चुन सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र की ओर जाना है, जहाँ से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और उन सब के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप हर चीज़ की जानकारी बहुत अच्छे से ले सकेंगे, और बिना हिचकिचाहट आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। और जब ज्ञान जब मिलता है ना, तो उसके अंदर से, अपने अंदर से जो क्या आता है, मन से जो डर निकल जाता है कि हमें लगता है हमें ये चीज़ पता चल गई, इस बारे में, इस विषय में ये जानकारी हमें मिल गई है। और हम लोगों की जो सोच का दायरा भी शिक्षा से बढ़ता है, और इसके साथ साथ ममता जी, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसमें भी हमारी बहुत मजबूती आती है।
1: बिल्कुल, और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एक समय था कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर कैद रहती थीं और उन्हें शिक्षा से परे ही रखा जाता था कि ठीक है, इनका, इन्हें क्या होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा कर एक शादी कर दी जाएगी, दूसरे घर जाकर वहाँ का कामकाज संभालेंगे। लेकिन अब दौर बदल चुका है, महिलाओं को भी, लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा ज़रूरी है जितना कि लड़कों के लिए। और वो जब आजीविका कमाने लायक हो जाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जैसे बहुत सारे काम हैं जो पुरुषों के क्षेत्र में ही रखा जाता है, जैसे बैंक का काम है, पोस्ट ऑफिस का काम है, बाहर की जो दुनिया होती है उसमें पुरुष ही कामयाब माने जाते हैं अमूमन, कि घर में लड़कियां नहीं करती हैं महिलाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के दौर में हर काम महिलाओं को भी करना चाहिए बराबर।
0: बिल्कुल, आपने
1: तो अगर वो शिक्षित नहीं होंगी तो ये नहीं कर पाएंगे।
0: जी, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि सबको समझना भी चाहिए कि घर की महिलाओं, बेटियों को इन सब चीज़ों की जानकारी ज़रूर दें।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परेशानी और मुसीबत के समय शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची साथी बनती है। नौकरी छूटने, व्यापार में घाटा होने, किसी भी वित्तीय संकट या हमारे साथ हुए आकस्मिक हादसे के बाद हमारी डिग्री, कौशल और शिक्षा ही हमें दोबारा खड़े होने का संबल देती है। शिक्षा ही हमारा वो अदृश्य कवच है जो हर तरह के संकट में हमें रास्ता दिखाती है और परिस्थितियों से लड़कर जीतने का हौसला भी देती है।
0: बिल्कुल, और एक साथी लिखते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीने का सही ढंग सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने खुद फैसले लेने में और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है।
1: अब सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और मंजरी जी हम शिक्षा की बात कर रहे थे कि क्यों जरूरी है शिक्षा। हमारे बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शिक्षा जो हर व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास जगाती है, मानसिक बौद्धिक विकास के साथ बेहतर जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती है। शिक्षित होने पर अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ में सभ्य समाज के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को तौर तरीका सिखा सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, नैतिक शिक्षा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहते हैं कि हर किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ कुछ पूछते रहिए, सीखते रहिए, तो उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी एक सखी लिखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। खदान से निकले पत्थरों को जब तराशा जाता है तभी वो हीरा बन जाता है, उसी तरह शिक्षा का संस्कार होता है। शिक्षा ज्ञान कौशल आदतें और उचित आचरण को सीखने और सिखाने के निरंतर प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व को सर्वांगीण बनवाकर उसे समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश करती है, तो अनौपचारिक शिक्षा अपने परिवार, समाज और अनुभवों से हम हरदम सीखते रहते हैं। और लिखते हैं कि जी हाँ, हर प्रकार की शिक्षा में कुछ बुनियादी नैतिक तत्व

दूर करने की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया सवेरा लाती है। ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सही आचरण और अनुशासन भी सिखाती है। देखिए ना, ये गाना भी कुछ यही बात कह रहा है, तो सुनते हैं आलाप फिल्म का ये गाना जी।

0: आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सुरुचि वाघ जॉम्बे.com की संस्थापक और सीईओ। ये एक सफल महिला उद्यमी है जिन्होंने 2010-2011 में मोहित गुंडेचा के साथ मिलकर जॉम्बे की सह स्थापना की। आखिर जॉम्बे क्या है ये हमें जानना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है। तो ये हम आपको बता दें कि ये पुणे स्थित एक प्रसिद्ध टैलेंट असेसमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और एनालिटिक्स कंपनी है। इसका कार्य होता है कि कंपनियों को उनके कर्मचारियों के व्यवहार, क्षमता और नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक और डेटा संचालित समाधान जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रदान करती है।
1: और सुरुचि के बारे में भी जानकारी दे दें कि वे औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इनका जन्म हुआ था, पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और यहाँ से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनी में ये प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में भी इन्होंने काम किया।
0: जी, भारत वापस आकर उनके अंदर का उद्यमी उन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा था कि उनका असली रास्ता भारत की मिट्टी में छिपा है। साल 2010 में जब भारत में स्टार्टअप कल्चर अपनी शुरुआती सांसें ले रहा था, वे नौकरी छोड़ भारत आई। वे समझ चुकी थी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सह संस्थापक मोहित गंडोत्रा के साथ मिलकर जॉम्बे की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी। एचआर का क्षेत्र भारत में पारंपरिक तरीकों से जकड़ा हुआ था। सुरुचि ने डेटा और साइक्रोमेटिक्स के आधार पर लोगों के व्यवहार

0: को मापने की बात वो करती थी, तो कई पुरानी सोच वाले अधिकारी उन पर शक करते थे। और एक युवा महिला एंटरप्रेन्योर के रूप में कॉर्पोरेट बोर्डरूम में अपनी बात मनवाना और भरोसा जीतना एक बहुत दोहरी चुनौती थी। लेकिन सुरुचि वाघ ने हार नहीं मानी। उन्होंने जॉम्बे को केवल एक डेटा कंपनी नहीं बनाया, बल्कि उसे एक टैलेंट असेसमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में ढाल दिया।
1: और उन्होंने तकनीकी और मनोविज्ञान को इस तरह से मिलाया, तकनीक और मनोविज्ञान को इस तरह मिलाया कि कंपनियां ये समझ सकें कि कोई उम्मीदवार न केवल चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उनकी कंपनी ने व्यक्ति की योग्यता, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, व्यवहार और कार्य करने की शैली का वैज्ञानिक रूप से आकलन किया। इससे कंपनियों को सही प्रतिभा की पहचान करने और कर्मचारियों के विकास के लिए बेहतर निर्माण के लिए वो कदम उठाती थीं।
0: जी, दिन रात की मेहनत उनकी रंग लाई और भारत की कई दिग्गज कंपनियों ने जॉम्बे के आकलनों पर भरोसा करना शुरू किया। इसमें लाखों लोगों के करियर को सही दिशा मिली। HR टेक की दुनिया में एक बड़ा नाम ये बन गया।
1: सुरुचि वाघ की ये यात्रा महज एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की दास्ता भी है जो सिलिकॉन वैली के आराम को छोड़कर अपने देश में शून्य से शुरुआत की और भारतीय कॉरपोरेट जगत में अपनी एक खास पहचान बनाने का हौसला भी रखती है। और उन्होंने खास पहचान बनाई।
0: जी, और हम लोग सुनते हैं एक गाना।

0: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं सखी सहेली की इस महफिल में और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां देख रही हूँ तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोता भी बहुत पढ़ते हैं,
1: वो हल्की फुल्की बातों में उन्होंने लिखा है ना,
0: पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और हमारी एक सखी हैं जो नियमित रूप से पढ़ती भी रहती हैं, लिखती भी रहती हैं कुछ कुछ, उनकी एक टिप्पणी है मेरे सामने दिख रही है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि बचपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते कब अखबार पढ़ना जीवन में शामिल हो गया पता ही नहीं चला। हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूली किताबों के अलावा बाल साहित्य से परिचय जरूर करवाना चाहिए। किताबें शब्द दर शब्द दिखाती हैं आईना और अंधेरे में थाम लेती है हाथ। कहने भर को नहीं, किताबें सच में हमारी सच्ची दोस्त हैं और अखबार हमें देश दुनिया की खबर से अपडेट रखता है, मगर अब आज का जो जमाना है वहां बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षरों की सरगोशियों के साथ डूबते उतराते रहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि कागज नहीं रखेंगे शब्दों को बांधकर, कागज ही रखेंगे शब्दों को बांधकर। मंजरी जी, आपको याद होगा जब हम कहीं यात्रा किया करते थे, इनकी इन पत्रिकाओं के नाम से याद आ गया कि जब यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजार होता था तो खास तौर से पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता था, ये सारी मैगजीन, चंदन, चंपक, नंदन और चंदा मामा वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, और स्टेशन पर बुक स्टॉल हुआ करते थे तो देखते थे कि अभी कितना टाइम है, दौड़ कर जाते थे और किताबों के वाले स्टॉल पर खड़े होकर वहां पर ये सारी पत्रिकाएं जो नई आई हुई होती थी वो ले लेते थे। अखबार अपने घर में जो आता था उसके अलावा जो दो तीन अखबार और होते थे लेके बंडल बना के रख लिया। अब ट्रेन के इंतजार के लिए कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से सीट पर बैठकर वो पढ़ाई होती
1: बिल्कुल थी। आपने बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी, और हमारे भी घर में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग जाते थे तो तुरंत ले लेते बहुत सारी किताबें, और पहले तो फोटो देखा जाता था किताबों की, उसके बाद फिर जो कहानी चित्र अच्छा लगता था उस हिसाब से उस नंदन या चंपक की कहानी पढ़ी जाती थी, और कई बार तो भूल गए लेना, गाड़ी चल दी और नहीं ले पाए किताब, तो बोगी में अगर कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बस उसके बगल में बैठना है।
0: उन दिनों बोगी में भी बेचने भी आ जाते
1: आते भी थे,
0: और कई बार वो इन पत्रिकाओं की कहानियों का पहले अंत पढ़ते थे, कि देखिए अंत में क्या, शुरू का पढ़ा और सोचते थे जल्दी से अंत क्या हुआ, अंत क्या हुआ, ये जिज्ञासा होती थी तो दौड़कर अंत पढ़ लेते थे।
1: मेरी तो आदत थी ममता जी, मैं तो बगल वाला जो बच्चा पढ़ता था ना बस उसी में आंखें ऐसे उसके पेज पे डाल के फटाफट पढ़ते रहते थे, कहीं ये पन्ना ना पलट दे, तो इस तरह की बहुत सारी यादें शामिल हो जाती हैं। और देखिए हमारे साथी भी लिखते हैं कि हम तो उस जनरेशन के हैं जब अखबार का टुकड़ा में अखबार के टुकड़े में उड़िया में बनाकर कोई सामान किराना काटा था, मतलब पुड़िया जो बनाते थे उससे अखबार के कोने से, तो उसको खोलकर पढ़ लेते थे, और अगर फिल्म संबंधी हो तो पूछे मत, उसे अच्छे से सहेज कर पढ़ा जाता था। हमारे उस सुनहरे दौर में किताब पढ़ना प्रिय मनोरंजन का साधन होता था और ज्ञान वृद्धि भी होता था। रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपके ज्ञान, शब्दावली और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता था, और देश दुनिया की जो खबरें होती थी वो तो ये पढ़ती ही पढ़ती थी।
0: और ये जो पढ़ने की बात है, इससे इनके बात से एक बात और याद आई कि समोसे का जो रैपर होता था उसमें कुछ कई बार लघु कथा लिखी होती थी या कोई अलग से चुटकुला या कोई
1: कार्टून का भी रहता था,
0: तो वो भी हम लोग पढ़ डालते थे। और चुरमुरे में भी जो अखबार का या किसी पत्रिका का कुछ लिखा हुआ होता था तो चुरमुरे में क्या होता था, गीला हो जाता था, तो खाने के बाद वो गीले वाले हिस्से को हम उठा उठा कर ऊपर अगल बगल थोड़ा उसको टेढ़ा करके तिरछा करके देखते थे कि इसमें क्या लिखा था, और कुछ कुछ अटकलें लगा लेते थे कि ये होगा इसमें।
1: देखिए शिक्षा का यही फायदा हुआ ना कि कहीं भी कुछ लिखा दिखा और पढ़ने लग गए,
0: साथ में पढ़ने का शौक जी, जी। क्योंकि उस समय पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ माध्यम नहीं होता था, या फिर आप खेलिए, ये सब मोबाइल और टेलीविजन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था, तो ये बहुत बड़ी सुविधा थी और एक तरह से ये किताबों से जोड़ने का माध्यम भी था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो अखबार में पूछा है कलम पढ़ने का, तो बचपन से मेरे पापा हम लोगों को सबसे पहले पेपर की हेडलाइन पढ़ना अनिवार्य होता था सुबह से, और उसके बाद एक जो एक जो कल माता था आज भी आता है,
1: कॉलम आया करता था,
0: यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कॉलम आता था आज भी आता है, जीवन दर्शन, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ कुछ कॉलम होते हैं वो पढ़ना, और कॉलम पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। पापा शुरू से ही पेपर में फोल्ड करके रख देते थे कि वो सभी को पढ़ना ज़रूरी है, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई। सचमुच जैसे बच्चों को हमें पढ़वाना होता है तो आज भी हम करते हैं अखबार का वो हिस्सा या तो कैंची से काट कर या फिर वो फोल्ड करके दे देते हैं कि हाँ ये पढ़ना ज़रूरी है।
1: और ममता जी के अखबार में एक पहले चित्र निकला करता था, रंगीन चित्र रहता था या रंग भरो चित्र वाला रहता था, तो उसको
0: वर्क पहली होती
1: हाँ,
0: थी
1: हाँ वो भी, और रंग भरो वाला रहता था, तो उसको काट करके हम लोग याद है कि बचपन में कॉपी में लगाते थे, फिर हमारे माता पिता कहते थे कि इसको सोचो और इससे सोच के कोई भी कहानी लिखो, तो वो हम लोग अपने शब्दों में छोटी मोटी कहानी 10-12 लाइन की लिख देते थे, फिर पढ़ते थे, वो लोग तो बताते थे कि यहाँ पे ये सही है यहाँ पे गलत है, तो वो लिखने का जो कला है वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब इसी तरह से देनी चाहिए,
0: इसी तरह से कल्पनाशीलता का विस्तार होता है, नहीं तो सब कुछ सामने आपके रखा होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि किताब अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और अखबार से हमें आसपास और देश विदेश की ताज़ा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और किताब पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और बहुत ही विषय मिल जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए और कहानियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं बचपन से अखबार और किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूँ, विभिन्न विषयों और लेखकों की किताबें मेरे लिए संग्रह में है, मेरे पास संग्रह में है, और यही शौक मेरे लड़के और अब पोती को भी है, पोती को गुड्डे गुड़ियों के खेल से ज़्यादा किताबें पढ़ने का चस्का है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को किसी भी समय आप अच्छा बच्चे रिजल्ट अच्छा लेके आते तब भी किताबें गिफ्ट करिए और गर्मियों की छुट्टी में किताबें उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए, बर्थडे और उस पर तो आप दीजिए, तो बच्चों के पास उनके उम्र के हिसाब से किताबें दीजिए,
0: किताबों और अखबार से जानकारी आपकी बढ़ती है। और फिलहाल सुनिए ये गाना ताकि पहचान कर सके, आसमान के तारों की पहचान कर सके या फिर देश दुनिया के बारे में जान सके, बहुत कुछ किताबें देती हैं, तो किताबों से बच्चों को जोड़कर रखिए।

0: तो ममता जी हमारी एक साथी लिखती हैं कि पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अगर कभी कभी ज्यादा बिजी होती हूँ तो रात सोने से पहले पूरे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो तभी वो सो पाती हैं। और न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि रात में उसको बाद में वो बारीकी से उसे पढ़ती हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत व्यक्ति के मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और भाषा सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। अखबार और किताबें पढ़ने के लाभ हैं ज्ञान में वृद्धि, देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं और नई जानकारियों से अपडेट, शब्दावली और भाषा में सुधार होता है, नए शब्द सीखने को मिलते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और छोटे छोटे लक्ष्य पैदा होते हैं। शुरुआत में दिन के केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें और रुचि के अनुरूप विषय चुनें। यहाँ पर ये कहना सचमुच बहुत ज़रूरी, इनकी टिप्पणी बहुत लंबी है तो संक्षेप में हमने पढ़ दी। यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर पढ़ने में रुचि पैदा करनी है बच्चों में आने वाली पीढ़ी में, तो जरूरी है कि रोचक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तब उनमें रुचि पैदा होगी।
0: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ममता जी की जिस एज का बच्चा है उस एज की किताबें ही उनको दिलाई जाएं, तो उससे उस समय की उन्हें ज्ञान मिले। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिंदी और इंग्लिश अखबार आता है, तो हम सुबह से सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस में ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। धर्म पत्नी को धार्मिक किताब पढ़ने की ज्यादा आदत है। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई की किताबों में ही अधिक समय जाता है और वैसे भी बच्चों का रुझान अखबार में कम और सोशल मीडिया के समाचारों में ज्यादा है। आज भी मैं अखबारों और किताबों को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और ममता जी, अखबार से जुड़ी मतलब ऐसी घरों में आदत होती है कि घर में अखबार आएगा तो सबसे पहले घर का कोई जो मुखिया होगा वही पेपर पढ़ता है, खोलता है, उसकी तह खोलता है। तो वो चीज़ मुझे मतलब लगती, जब अगर मैं कभी होती तो मुझे लगता है कि उस घर में मुझे लगता है पेपर आया तो हम ही पढ़ लें सबसे पहले। तो
1: और पहले ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, बड़ा परिवार, तो होड़ भी लगती थी कि कौन पढ़ेगा पहले। अखबार वाला आया तो जल्दी से लेकर कि हम पहले एक नज़र डाल लेते हैं। और पत्रिकाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा होड़ होती थी कि हाथ जिसके हाथ लगी है वो पत्रिका पहले पढ़ेगा। और उसमें पता नहीं एक अलग सा सुख होता था कि हम पहले पढ़ लें, वो जो खुशबू होती थी पन्नों की खुशबू, वो आकृष्ट किया करती थी।
0: वही मैं कहने वाली थी। और कई बार मैंने तो ऐसे ही किया कि अखबार बिल्कुल खोल के पढ़ लिया, फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके रख दिया, तो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि अखबार पढ़ा जा चुका है।
1: और पुराने अखबार का प्रयोग भी बड़ा अच्छा किया जाता था, पुराने अखबार निकाल कर किताबों पर कवर चढ़ाना। जो स्कूल की किताबें होती थी, स्कूल कॉलेज की, वो तो अलग पेपर चढ़ाया जाता था कवर के रूप में, लेकिन जो पत्रिकाएं होती थी उन पत्रिकाओं को भी हम सहेजने संभालने के लिए उसको कवर चढ़ा दिया करते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो संभालने की प्रवृत्ति है अब कहीं गुम हो रही है बच्चों में, ये हम सबको सिखाने की ज़रूरत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह आते ही पढ़ने से लेकर सोने तक अखबार सिरहाने ही रहता और देश दुनिया की हर न्यूज़ से अपडेट रहना शौक।

0: था। मेरे स्टाफ के लोग भी मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। हालांकि अब पढ़ना थोड़ा फेसबुक का शौक लगने और कम दिखाई देने के कारण कम हो गया है। फेसबुक का शौक अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वो शौक हटा देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि वैसे तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ ही मेरा पसंदीदा है, पर मैं शुरुआत पहले पृष्ठ से ही करना पसंद करता हूं और बाकायदा 1-2-3 पृष्ठ पढ़ती जाती हूं, लिखती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि संपादकीय पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा तो शायद बाकी छूट ना जाए, और संपादकीय के बगल वाले पृष्ठ पर कोई विशेष पृष्ठ भी हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, फिल्म, कुकिंग या साहित्य से संबंधित, तो हम वहीं रह जाएंगे। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट से ये स्पोर्ट्स वाले पृष्ठ भी वो देखा करते थे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि किशोर अवस्था में मैं बस स्टैंड पर बस की राह देखने के लिए एक जगह ही खड़ा रहता था और वो जगह है बुक स्टॉल। स्टॉल में बुक टंगी होती थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरे पर्स में आज भी न्यूज़पेपर के वो पृष्ठ और पेन रखा ही रहता है जिसमें सुडोकू आता है और वर्ग पहली आती है। कभी डॉक्टर का वेट करना हो, कहीं भी समय मिलता है तो मैं उसको ही भरने लग जाती हूँ।
1: वैसे भी अखबार पढ़ने में महिलाओं को थोड़ा बाद ही में टाइम मिलता है, महिला जी, ममता जी, क्योंकि हमारे साथी लोग पहले अखबार पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो महिलाएं तो सुबह सुबह किचन और चाय इन सब में ही लगी रहती है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पढ़ें और अपनी आदत जरूर बनाएं अखबार।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी, ये सभी बातें याद ताज़ा कर रही हैं। इतनी सुंदर तरह से लिफाफे को खोलते थे कि कुछ फट न जाए, जितना अधिक पढ़ सके पढ़ लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार किताब पढ़ने की आदत, हमारे घर पर सालों से हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार आते हैं जो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। और एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि स्कूल पढ़ने के समय इंदौर में थे, तब हमारे यहाँ नई दुनिया पेपर आता था और 12 या 15 सिनेमा हॉल थे। उस समय इंदौर में पेपर में क्रम से सिनेमा हॉल और उनमें लगी फिल्में और शो का समय दिया हुआ रहता था। सबसे पहले देखते थे राशिफल, फिर न्यूज़, अब भास्कर में अखबार में सबसे पहले फ्रंट पेज की मुख्य समाचार पढ़ती हूँ और पूरे अखबार के संक्षिप्त लेख पढ़ती हूँ, फिर आराम से मैनेजमेंट, फंडा वगैरह वगैरह।
1: सही बात,
0: राशिफल भी हम देखा करते थे, वो तो रोजाना वाला राशिफल,
1: रोजाना वाला
0: आज क्या होने वाला है।
1: जी जी।
0: और एक समय रंगों के बारे में आने लगा था तो वो भी देखते थे कि कौन सा वाला रंग शुभ होगा,
1: शुभ होगा। और साथ में जब जो मतलब विवाह योग्य व्यक्ति बच्चे होते थे तो वो लोग भी उसमें तलाशते रहते थे, जो कॉलम आता था कि हाँ भाई वर वधु का है, तो वो भी बड़ा उसमें खोजबीन चलती रहती थी। नहीं भी खोजबीन है तो भी हम पढ़ के देखा करते थे कि इसमें क्या चल क्या रहा है, आजकल क्या डिमांड है, तो बड़ा अच्छा लगता था।
0: तो अब पढ़ने की बातें तो अंतहीन है, बस यही यहाँ पर इस मंच से यही कहते हैं कि जहाँ जितना हो सके खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए, अखबार जरूर पढ़िए। फिलहाल ये गाना सुनिए।

0: हे राजा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी और आज कुछ मुहावरों की बात हमें करनी थी, याद है?
1: बिल्कुल, घर का घाट एक करना, यानी कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि बात पहले मुहावरे की करें तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करना, यानी कड़ी मेहनत करना होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने या कोई चीज पाने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात पर गुजराती में मुहावरा भी है, कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नथी, मतलब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और यही कि जैसे कि अब हम एग्जाम देना, तो उसके पहले हम कितनी तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि हर प्रश्न हम याद कर लें, जो अगर आए तो हम उसका हल लिख सके, उत्तर लिख सके। तो घर का घाट एक करना, यानी कि एकदम कठिन परिश्रम कर ही डालना जिसे कहते हैं। और हमारे साथी और लिखते हैं कि मेहनत और परिश्रम करना लक्ष्य पाने को पाने के लिए दिन रात एक कर देना, ये मुहावरा हमारी जिंदगी में बहुत बार काम आता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, इसका वाक्य प्रयोग भी बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि परीक्षा पास होने के लिए घर एक कर देना, घर का घाट कर देना।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक जवान देश सेवा में लगा हुआ था, जहां उसे समय बेसमय संवेदनशील निर्जन और दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए जाना होता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई, तीनों ही शासकीय सेवा में थे। कुछ अरसे बाद अस्वस्थता के कारण पिताजी नहीं रहे। जवान श्राद्ध कर्म कार्य हेतु घर आने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर इस उम्मीद से नहीं गया कि उसे पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। जवान ने नियुक्ति पाने के लिए घर घाट एक कर दिए, लेकिन उसे परिवार में सभी लोग सेवारत होने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।
1: बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए चारों तरफ भाग दौड़ करना, हर जगह प्रयास करना या बहुत अधिक शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, इसमें हर ठिकाने पर इन्होंने लिखा है कि बेटी की शादी की तैयारी में माता पिता ने घर घाट एक कर दिया, अंतर क्या है, कोई कसर बाकी ना छोड़ी। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत जुटना ही पड़ता है। और एक लिखते हैं, घर घाट एक करना कठिन परिश्रम करना, जैसे अच्छी नौकरी पाने के लिए बेटे ने दिन रात घर घाट एक कर दिया,
0: मतलब जी तोड़ कोशिश करना। और हमारे सभी श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और कुछ लोगों की आज भी आदत है मुहावरे में बात करना, लोकोक्तियों का प्रयोग करना, अच्छी बात है। सभी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि मुहावरों में कैसी बात की जाती है। और एक आपकी भाषा में सजावट आ जाती है, आप उसका जैसे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जब खासतौर से कुछ आप ललित लिखने बैठते हैं, ललित निबंध या कोई आलेख है, कोई कहानी है, तो उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो भाषा का श्रृंगार होता है।
1: बिल्कुल,
0: बहरहाल ये बात बहुत सारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां आई हैं, लेकिन अमूमन उसका निचोड़ यही है। तो अब एक गाना सुनते हैं, ये है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी समाधि और आज आशा भोसले का जन्मदिन है। इस गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

श्रोताओ, अभी आप विद्वार्थी के कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय गुजरात के नवसारी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: 50 भाई बहनों ना माथा बधु न नाखी दे भाई भाई, ये तो इमनी सेवा करे थे, सरकारी व्यवस्था ना भाग रूपे लागेला थे, पण गंदगी न करवानी जवाबदारी तो आपड़ी छे के नहीं? आपड़ा घर में पण आपड़ी मां केटली बधी सफाई राखती होय, અને એકાદ છોકરો ઘરમાં કઈ ને કઈ ગંદુ કર્યા કરતો હોય તો માને દુઃખ થતું હોય કે નથી થતું? અને એટલા માટે સાથીઓ, હવે તમારા સૌરાષ્ટ્રના ભાઈઓ ઘણા રહે છે અહીંયા।
0: सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में आईटीआई क्लस्टरों के लिए 735 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय वाली महत्वपूर्ण निवेश योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान के लिए 241 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 240 करोड़ रुपए से अधिक और तेलंगाना के लिए 254 करोड़ रुपए की निवेश योजना शामिल है। इसे प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु की 5वीं राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। बम्बई उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके टिप्पणियों को लेकर 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाइल सौदे पर राहुल गांधी की 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायलों से आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के पुरस्कार विभिन्न भाषाओं, विधाओं और सिनेमाई रूपों में विविधताओं का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा, भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म और रामनामी को ज्यूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र चुना गया है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। वहीं तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष डबल्स के फाइनल में इराक की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओ, ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। आइए पुनः ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम
4: दूरदर्शन कशीर। उस पर मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज जो कभी 7 एपिसोड कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पर काम करता गया, तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का।
5: जी, तो एक बेस बन गया आपका वहाँ काम करते करते। जी, तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो मुंबई का जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी, किस तरह से आप क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
4: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है मैं समझूंगा, क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम दूसरे हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए, हम बिल्कुल बेघर हो गए थे यू नो, उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ यू नो, बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने BCOM किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया कि
5: अच्छा।
4: मुंबई इसलिए आऊंगा कि नौकरी भी करूंगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना जरूर मैं ट्राई करना चाहूंगा, और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा, और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो होती है ना वो इंसान को चुनती है। सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज की तरफ देखा ही नहीं।
5: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित मुल्क की अगर हम बात करें?
4: मुल्क था और वो पार्टीशन पे ही था पूरा, और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना यू नो, कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको यू नो, गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया, मुझे अच्छे शोज मिलते गए, और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस गॉड ही रह गया। सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने सिखाया मुझे।
5: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही थी, क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो, तो कौन सा गाना यहाँ चला लें?
4: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना, मेरा नाम जोकर से।
5: जीना या मरना या?
4: जी हाँ।
5: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलॉसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से. लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बंध जाते हैं. शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं.
1: जी
0: जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है. लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए,
1: जी
0: कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया. तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पे कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है
1: जी
0: और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है.
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था, और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी, जो वो
0: जी
1: उसमें बहुत ज़्यादा हिट हुई थी. उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है,
0: जी
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था. उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ. और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय, मैं ये दोनों शोज कर रहा था. ये कुछ 2-2.5 साल तक चलता रहा,
0: जी
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइप
0: टाइप
1: कास्ट
0: कास्ट
1: कर दिया जाता
0: जी
1: है एक्टर्स को. लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहाँ से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे, तो कभी भी फिर
0: हाँ
1: तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीज़ों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा?
0: जी
1: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं, और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं, तो या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था, और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना, जो माँ था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हो.
0: जी
1: लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया, तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए. तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया, और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि मेरा खुद का मानना है ज़िंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी. तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा.
0: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है.
1: देखिए, मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है.
0: जी
1: अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा, तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है.
0: जी
1: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके, बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए. और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुँचा. अगर मैं एक ही जैसी चीज़ कर रहा होता,
0: जी
1: तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना. और
0: जी
1: आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी,
0: जी वो स्वीकार
1: सिर्फ
0: करना बहुत
1: सिर्फ
0: जरूरी है.
1: उनकी वजह से. मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी का क्रेडिट है, वो भगवान मैं
0: जी
1: मानता हूँ, यूनिवर्स, और मेरे ऑडियंस हैं, मेरे फैंस हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज उनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ.
0: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं हम देख सकते हैं इनको और
1: बिल्कुल
0: स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी
1: बिल्कुल,
0: बात है.
1: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा, मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा.
0: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
1: साईं बाबा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है.
0: जी
1: लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है, तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के, हर वक्त चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो, फिर भी उसका स्माइल रख के, मुस्कुराते हुए, उसका समाधान पे ध्यान दे के, प्रकृति पे, ईश्वर पे विश्वास रख के, उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना, और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था. मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा.
0: जी तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हों या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्री राम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूँ
0: जी
1: और मैं उनके मंदिर जाया करता था और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ। उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी था उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक एक एक अनबिलीवेबल सा मौका था। और साई सच्चरित्र में पहले ही से ही पढ़ चुका था मैं, उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था।
0: जी
1: और जब उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीज़ों को, आपको लाइफ को हैंडल करना है, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
0: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैं चाहता हूं कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
0: आनंद फिल्म से
1: बिल्कुल
0: जी।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो विनीत, ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे, मतलब बस आते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किल

0: तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहाँ जो सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है,
1: जी
0: जब सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज़ का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं यहाँ, आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पे आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई एक राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से ज़रूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त
1: जी
0: आपके तुणीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी
1: जी
0: आप सस्टेन कर पाते हैं।
1: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
0: मेरा
1: कितने
0: जो
1: घंटों का?
0: पॉपुलर शो था माय का, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
1: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया
0: हाँ,
1: जिसमें
0: जिसमें
1: ब्लास्ट के थ्रू इनका
0: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे, हमारे ऊपर और चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था। और मैंने बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए, कम से कम 56 से 60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे
1: जी
0: और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर।
1: जी
0: और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूँ। तो ये
1: और तब तक
0: बहुत,
1: बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आ गए
0: फिर
1: वहां पर
0: जब
1: शूट
0: ये 2 दिन मैं सोया हूँ, उसके बाद वापस
1: जी
0: से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
1: तो ये 60 घंटे, 56 से 60 घंटे का काम जो आपने किया, वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है। तो
0: सारी
1: कोई
0: यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स
1: हाँ
0: अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। सो बहुत ड्रेनिंग था, लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
1: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का, हम सुन ले सब।
0: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
1: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
0: बिल्कुल।

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता
1: जी
0: नहीं है,
1: हाँ
0: सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी।
1: जी
0: जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है, अपना अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसे ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को,
1: जी
0: क्योंकि कई बार
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस।
1: ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए. और
0: जी
1: यही चीज़ है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौटकर चले जाते हैं.
0: जी
1: क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है.
0: जी
1: और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं.
0: जी
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट, आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना ज़रूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया.
0: जी
1: लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग ख़राब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जहाँ पर आपका दिमाग भटक सकता है.
0: जी
1: लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से बड़ा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है. चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है,
0: जी
1: वो लोगों को नहीं दिखता. जब वो पा चुका होता है, और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है. और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज़्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है. तो मुझे लगता है जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए, जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
0: खुश होके तुरंत कि हमने
1: क्लब्स
0: सब
1: में
0: करा है।
1: जाते हुए या
0: जी
1: पार्टीज में जाते हुए उस पर ना जाएं शुरू में. करें, लेकिन ये चीज़ें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए. सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है.
0: जी
1: तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं. उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे. और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा. सो ये
0: कल क्या
1: बहुत
0: होगा का
1: ज़रूरी
0: पूरा। हाँ
1: चीज़ है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए.
0: जी, और जैसे कि अब इन दिनों टीवी फिल्म ओटीटी वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज़्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो एआई आ रहा है, एआई की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
1: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा एआई से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे.
0: जी
1: अगर लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा. वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है. ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन उसके बाद एलपीजी आ गया, और उसके
0: जी
1: बाद पहले माचिस से और किसी चीज़ से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया, और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया. तो
0: जी
1: ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू कर दें. सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा. जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है.
0: जी
1: यही प्रकृति का नियम है. तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो,
0: जी
1: देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज कर रहे हैं, वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है, कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं
0: जी
1: कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानियों को बता सकता है। तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है, कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया जाता है, कभी हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, उनको एंटरटेन तो करना ज़रूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज़्यादा कलाकार होंगे, कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज़्यादा प्यार मुझे लगता है फैलेगा।
0: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही है तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सब का क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
1: बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविजन शोज की, और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहाँ भी हमारे इंडियन टेलीविजन शोज टेलीकास्ट होते हैं, वहाँ हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में
0: जी,
1: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब भी यू नो मैं वहाँ जाता हूँ। और ख़ासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज़ हुई, उसकी निर्माता निकोलेट एंडिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो यूएस की काफ़ी जानी मानी डायरेक्टर हैं। इसकी स्टार कास्ट बहुत विशाल है, अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें
0: जी।
1: ये एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूँ जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहाँ रिलीज़ होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28th ऑफ अगस्त को वो यूके में रिलीज़ हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज़ हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ आए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहाँ ग्रैंड प्रीमियर हुआ था जिसमें वहाँ की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारी इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म, और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ। और मुझे इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है क्योंकि मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का, जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए। और वो लोग बहुत खुश थे। मज़े की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया, और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे
0: जी,
1: वहाँ पर यहाँ की एक चैनल वहाँ पर टेलीकास्ट होती है जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं, और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहाँ पर टेलीकास्ट होता है, और जब मैं वहाँ गया और वो इतना पॉपुलर शो है वहाँ कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है
0: जी,
1: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
0: वहां कैसे
1: इंडियन एक्टर
0: गए?
1: वहां कैसे हूं, पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा और मेरी प्रोड्यूसर वॉज शॉक्ड कि ये कैसे है? मतलब यहाँ के लोकल लोग तुम्हें पहचान रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
0: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं कई बार, और भी करते होंगे कुछ ना कुछ, आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
1: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा, और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का, और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान उन्होंने भी मुझे वापस से एक यू नो एक ग्रीटिंग किया, एक इशारा किया एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट. और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा, मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं मतलब बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन. और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था, लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली
0: जी.
1: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं और कोई खड़ा है कोई कुछ है. तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ.
0: जी.
1: सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है. जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो.
0: जी.
1: He was the part of the show. He was playing my dad in that show, in that pilot. When I saw him, मेरे लिए वो मतलब मेरा एक मैंने फ्रीज हो गया था कि जिनको मैं इतना मानता हूँ आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ. और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे और मैंने कहा काका मतलब मेरे लिए ये एक मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा. एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर.
0: तो यहाँ फिर राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले.
1: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के,
0: तो वही सुन लेते.
1: बिल्कुल
0: जी.

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो, जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे,
1: बावर्ची
0: बावर्ची
1: बावर्ची
0: तो
1: एनी
0: बस
1: डे मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और मेरे
0: हाँ
1: पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस
0: हाँ
1: तरह से काम
0: जी
1: किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज़ में ढल जाते थे वो, लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो
0: हाँ
1: या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी
0: जी
1: वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना
0: हाँ बार बार देखी जाती थी, बागवान
1: अपने
0: से पहले ये देखी जाती
1: हाँ,
0: थी
1: बागबान से पहले अगर कोई
0: जी
1: फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है।
0: जी और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं,
1: हाँ
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: भी कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं ऐसा लगता
1: बिल्कुल,
0: है वो
1: उनका
0: एक
1: स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा, यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वाज, वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और
0: हाँ
1: सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग
0: स्टार
1: स्टार,
0: जी, उनका एक अलग ही चार्म था।
1: अलग ही चाम था।
0: नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं कुछ और बन
1: बिल्कुल,
0: के आते हैं और फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था।
0: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं,
1: हाँ
0: उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया
1: ये
0: जा
1: सब
0: सकता है
1: असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री
0: जी।
1: के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
0: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आपका अपना निजी जीवन है।
1: जी
0: तो कभी
1: हाँ
0: कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है, तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है? क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज़ पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज़ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज़ को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फ़ायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए।
0: जी
1: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत रैना जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए,
0: जी
1: तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रहना है,
0: जी
1: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज़्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूँ,
0: जी
1: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है, वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रैना है। वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है वो मेकअप, जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है, उसका विनीत
0: जी
1: रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: जी
1: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो
0: विनीत रैना
1: विनीत
0: बन
1: रैना है
0: जी
1: जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं, मुझे लगता है अगर
0: जी
1: वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है।
0: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं, शायद इतने साल से
1: देखिए
0: काम
1: हमेशा
0: करते
1: तो
0: करते आपको ये
1: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था, तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे भज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमिडिएटली फ़ोन निकाला तो उस पर काफ़ी सारे मिस कॉल्स थे। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है।
0: अच्छा।
1: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था। तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहाँ पर मैं सब भूल गया और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए
0: जी,
1: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम ख़त्म किया, सीन पूरा ख़त्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम ख़त्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो ऐसे ओकेजन्स लाइफ में हो तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए और ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस मेंटेन करना आसान रहता है।
0: और एक जिम्मेदारी भी समझनी ज़रूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
1: जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए, क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊँगा।
0: बिल्कुल।

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन
1: हाँ,
0: आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले हैं आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता है
0: क्रश जी
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था,
0: जी
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी।
0: जी
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी, तो मैंने उनको देखता रहता था। तो उनका नाम चांदनी था,
0: जी
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहाँ ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे,
0: जी,
1: तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत
0: बचपन
1: याद
0: की
1: है।
0: उन यादों तक
1: जी
0: ये जाता है
1: हाँ
0: गाना।
1: जी हाँ,
0: तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए स्क्रिप्ट याद करने की, और मैं बहुत, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन
0: जी
1: एक्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करूँ,
0: जी
1: अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूँ, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूँ जब तक कि मैं वही ना बन जाऊँ जो ये लाइन्स बोल रहा है।
0: जी
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो
0: जी
1: शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था,
0: जी
1: और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे, जब तक मैं उनको फील ना करूँ कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, वो
0: जी
1: याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूँ, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं,
1: जी
0: तो अगर
1: हाँ,
0: आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आरडी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का, मुझे लगता है, सपना भी रहता है और एन्जॉय भी करता है हर डीजे।
0: जी
1: उनके जितने भी ट्रैक्स हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने,
0: जी
1: उन्होंने ही डिस्को और इस तरह के गाने, एक आरडी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहरी,
0: जी
1: इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूज़िक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज़ किया, और मैं गया,
0: जी
1: मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था, और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है, और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं। लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन
0: चैन
1: कहाँ
0: का
1: रे
0: रे,
1: उसको 100% रिमिक्स करना चाहूँगा।
0: तो वही गीत यहां सुन भी लेते हम।
1: बिल्कुल

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया हम अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूँ, तो ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मज़ा आया और दोबारा आना चाहूँगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: बिल्कुल,
1: हाँ।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओ, अभी आप विद भारती के कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ ही आज के हमारे पहली सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है, इस समय शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। श्रोताओ, शाम के दूसरी सभा में यानी कि 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 हो चुके हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी आपको देते हैं।

श्रोताओं, आज की दूसरी सभा में रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष प्रस्तुतियां। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम से। सबसे पहले माल कार्यक्रम में सुनेंगे भक्त आधुनिक गीत रमलुन किम ब्यते और उनके साथियों की आवाज में 6:05 पर। 6:25 रहेगा जेमी कार्यक्रम का। इसमें आप सुनेंगे भक्ति गीत पुमजे लुंगबे जेमे और उनके साथियों की आवाज में।

6:45 पर आप सुनेंगे संध्या आंचलिक बातुरी। 7 बजे का समय रहेगा दिमासा कार्यक्रम का। आप सुनेंगे लोकगीत हरेंद्र फुंगलो की आवाज में। 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे करबी कार्यक्रम में आधुनिकी काजीर एंगेपी और उनके साथियों की आवाज में। 7:40 पर आप सुनेंगे कुकी कार्यक्रम में भक्ति गीत लम्होई चांगसन और उनके साथियों की आवाज में। 8 बजे का समय रहेगा किसान वाणी कार्यक्रम का। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत। 8:45 रहेगा समाचार संध्या का। 9 बजे आप सुनेंगे आपके गीत कार्यक्रम। 9:30 पर रहेगा चित्रगीत कार्यक्रम। तो ये थे आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, समय हो गया है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को शुरू करने का। सुनते हैं मार्ग कार्यक्रम में आधुनिक गीत रमलुन किम ब्याते और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मार कार्यक्रम में आधुनिक गीत रामलुन की बियाते और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ मार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो चला है जेमी कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। सुनते हैं भक्ति गीत पुमजे लुंगबे जेमे और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जेमे कार्यक्रम में भक्ति गीत पुमजे लुंगबे जेमे और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ जेमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब समय हो गया है संध्या आंचलिक बातोरे का। सुनते हैं असमिया में समाचार आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे दिमासा कार्यक्रम में लोकगीत हरेंद्र फुंगलो की आवाज़ में। इसी गीत के साथ आज का दिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है कर्बी कार्यक्रम का। सुनते हैं आधुनिक गीत काजीर एंगहिपी और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे करबी कार्यक्रम में आधुनिक गीत काजीर एंहेपी और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी गीत के साथ करबी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। समय हो गया है कुकी कार्यक्रम का। सुनते हैं भक्ति गीत लम्होई चांगसन और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे करबी कार्यक्रम में भक्ति गीत लम्होई चांगसन और उनके साथियों की आवाज में। और इसी गीत के साथ आज का कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है कृषि कार्यक्रम किसान वाणी का। चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी हाफलोंग के कृषि कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ मेलेडी।
1: और मैं हूँ जिदित। मेरी तरफ से भी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आज की किसान वाणी की इस कड़ी में हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं लताओं में होने वाली सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी। साथ में हम आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा स्थानीय लोकगीत। तो श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं लता वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में, जिनमें लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, तोरई, परवल और सेम जैसी महत्वपूर्ण फसलें शामिल हैं। ये सब्जियां न केवल हमारे भोजन को पौष्टिक बनाती हैं, बल्कि किसानों के लिए अच्छी आय का भी एक स्रोत है। उचित जलवायु, उन्नत किस्मों का चयन, संतुलित पोषण प्रबंधन और सही देखभाल के माध्यम से इन फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं लता वर्गीय सब्जियों की सफल खेती आप किस तरह से कर सकते हैं।

0: तो सबसे पहले जान लेते हैं जलवायु और मिट्टी के बारे में। लतादार सब्जियां जैसे कि लौकी, कद्दू, खीरा, तोरई और सेम की सफल खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इन फसलों की अच्छी वृद्धि, फूल आने के और फल बनने के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श माना जाता है। अधिक ठंड, पाला या फिर ज्यादा वर्षा की स्थिति में पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है और उत्पादन में कमी आ सकती है। इसलिए इन फसलों की बुआई ऐसे समय पर करनी चाहिए जब मौसम अनुकूल हो और पाले का खतरा ना हो। पर्याप्त धूप, उचित नमी मिलने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अधिक संख्या में फूल और फल उत्पन्न करते हैं। मिट्टी की दृष्टि से लतादार सब्जियों के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट या फिर बालुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़ें आसानी से फैलती हैं और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व, वायु और नमी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर पौधे पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। भारी और जल भराव वाली मिट्टी इन फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि इससे जड़ सड़न और अन्य रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। खेत की तैयारी के समय अच्छी तरह सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट मिलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। खेत की तैयारी आप किस तरह कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी। लतादार सब्जियों की अच्छी वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए खेत को अच्छे से तैयार करना बहुत ही जरूरी है। खेत की तैयारी का मुख्य उद्देश्य मिट्टी को भुरभुरी, नरम और खरपतवार रहित बनाना होता है, ताकि बीजों का अंकुरण अच्छी तरह हो सके और पौधों की जड़ें गहराई तक फैलकर आवश्यक पोषक तत्वों और नमी को आसानी से प्राप्त कर सके। इसलिए सबसे पहले खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और बाद की जुताइयां देशी हल या फिर कल्टीवेटर से की जा सकती है। हर जुताई के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को समतल और भुरभुरी बना लेना चाहिए। इससे मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है और पौधों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है। अंतिम जुताई के समय सड़े हुए गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में समान रूप से मिलानी चाहिए। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। इसके बाद खेत को समतल करके फसल को और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। इसके बाद खेत को समतल करके फसल और किस्म के अनुसार मेड़, नालियां या गड्ढे तैयार कर लिए जाते हैं। लतादार सब्जियों की खेती में सामान्य तौर पर मेड़ों या उठी हुई क्यारियों पर बुआई की जाती है, जिससे जल निकासी अच्छी बनी रहती है और पौधों की जड़ों में पानी का ठहराव नहीं होता है। पौधों और कतारों के बीच में उचित दूरी रखना बहुत जरूरी है, ताकि बेलों को फैलने और बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके।
1: श्रोताओं, खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में बात करें तो लतादार सब्जियों की अच्छी वृद्धि, अधिक फूल आने और अच्छी गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन के लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। पौधों को उनकी वृद्धि के अलग अलग चरणों में अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसीलिए खेत की तैयारी के समय और फसल की वृद्धि के दौरान उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराना चाहिए। खेत की अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टर लगभग 20 से 25 टन अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिला देनी चाहिए। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, उसकी जल धारण क्षमता में सुधार करने और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके उपयोग से मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है और पौधों की जड़ों का विकास भी बेहतर होता है। रासायनिक उर्वरकों के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों और बेलों की वृद्धि को बढ़ावा देती है और पौधों को हरा भरा बनाए रखती है। फास्फोरस जड़ों के विकास, फूल बनने और फल लगने की प्रक्रिया में सहायक होता है, जबकि पोटाश फलों की गुणवत्ता, आकार और चमक को बढ़ाने के साथ साथ पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ देने के बजाय इसे 2 या 3 भागों में बांटकर फसल की वृद्धि के दौरान देना अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इससे पौधों को लगातार पोषक मिलता रहता है और उर्वरकों का उपयोग अधिक प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग भी लतादार सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। अगर मिट्टी में किसी सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, बोरन या सल्फर की कमी हो तो पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है और फलन कम हो सकता है। इसीलिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। संतुलित और वैज्ञानिक ढंग से खाद और उर्वरकों का उपयोग करने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, उत्पादन बढ़ता है और किसानों को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बातें करते हैं उन्नत किस्मों का चयन कैसे करते हैं। लतादार सब्जियों की खेती में अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और रोग और कीटों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी फसल की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि किसान ने अपनी जलवायु, मिट्टी और बाजार की मांग के अनुसार किस किस्म का चयन किया है। उन्नत किस्मों में सामान्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन क्षमता होती है और ये कई प्रमुख रोगों और कीटों के प्रति अधिक सहनशील होती है। इसीलिए किसानों को हमेशा प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीजों का ही उपयोग करना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छा हो और पौधों की वृद्धि समान रूप से हो सके। लतादार सब्जियों की अलग अलग फसलों के लिए अनेक उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। लौकी की खेती के लिए पूसा नवीन, पूसा संतुष्टि और अर्का बहार जैसी किस्में लोकप्रिय है। करेले के लिए पूसा दो मौसमी और पूसा विशेष, जबकि खरी के लिए पूसा उदय और पूसा संयोग जैसी किस्में अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार तोराई, कद्दू और सेम की भी कई उन्नत किस्में उपलब्ध है जो अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों या कृषि विभाग की सलाह के अनुसार अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म का चयन करना अधिक लाभदायक होता है। उन्नत किस्मों के चयन से न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि फलों का आकार, रंग, स्वाद और गुणवत्ता भी बेहतर होती है, जिससे बाजार में उनकी मांग और कीमत अधिक मिलती है। इसके अलावा कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करने से किसान एक वर्ष में अधिक फसल चक्र अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसीलिए लतादार सब्जियों की फसल खेती के लिए उचित और उन्नत किस्मों का चयन एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
0: श्रोताओं, आप जान लेते हैं बीज की मात्रा और बुआई के बारे में। लतादार सब्जियों के सफल खेती के लिए उचित मात्रा में बीज का उपयोग और सही विधि से बुआई करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर बीज की मात्रा कम या ज्यादा हो या फिर बुआई सही तरीके से ना की जाए तो पौधों की संख्या, वृद्धि और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए किसानों को हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले, स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का ही चयन करना चाहिए। प्रमाणित बीजों का अंकुरण प्रतिशत अधिक होता है, जिससे पौधे की संख्या समान रहती है और फसल का विकास बेहतर होता है। लतादार सब्जियों के लिए बीज की मात्रा फसल और किस्म के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि लौकी, करेला और तोरई जैसी फसलों में प्रति हेक्टेयर लगभग 3 से 5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है, जबकि खीरा और कद्दू जैसी फसलों की बीज की मात्रा कुछ कम या अधिक हो सकती है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना लाभदायक होता है, क्योंकि इससे बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और अंकुरण क्षमता में वृद्धि होती है। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है, जिससे वे आसानी से अंकुरित हो सके और पौधों की प्रारंभिक वृद्धि अच्छी हो। लतादार सब्जियों की बुआई मेड़ों, क्यारियों या फिर गड्ढों में की जाती है और पौधों और कतारों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाती है ताकि बेलों को फैलने और बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। उचित दूरी बनाए रखने से पौधों को पर्याप्त धूप, वायु मिलती है, जिससे रोगों का प्रकोप कम होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे और बीजों का अंकुरण समान रूप से हो सके। अगर बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो अंकुरण जल्दी और अच्छी तरह होता है। लतादार सब्जियों की खेती में सही समय पर और वैज्ञानिक विधि से की गई बुआई पौधों की स्वस्थ वृद्धि और अधिक उत्पादन की आधारशिला मानी जाती है। अब बातें करते हैं सहारा देने का प्रबंधन। लतादार सब्जियों की खेती में बेलों को उचित सहारा देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इन फसलों की बेलें जमीन पर फैलने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ने पर अधिक स्वस्थ और उत्पादक होती है। लौकी, करेला, तोरई, खीरा और सेम जैसी लतादार सब्जियों में सहारा देने की व्यवस्था फसल की वृद्धि और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर बेलों को उचित सहारा नहीं दिया जाता तो वे जमीन पर फैल जाते हैं और फलों के सड़ने, कीट और रोगों के प्रकोप और फिर उत्पादन में कमी आने की संभावना बढ़ जाती है। सहारा देने के लिए बांस, लकड़ी के खम्भों, रस्सियों और तारों की सहायता से मचान तैयार किया जाता है। खेत में निश्चित दूरी पर मजबूत बांस या फिर खम्भे गाड़ कर उनके ऊपर तार या रस्सियां बांधी जाती हैं, जिन पर बेलों को चढ़ाया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं, बेलों को सावधानी पूर्वक मचान या सहारे की ओर मोड़ दिया जाता है, जिसे वे आसानी से ऊपर की ओर फैल सके। इस व्यवस्था से पौधों को पर्याप्त धूप और वायु मिलती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बेहतर होती है और पौधों का विकास तेजी से होता है। मचान पद्धति अपनाने से फल जमीन के संपर्क में नहीं आते, जिससे उनमें सड़न या दाग धब्बे कम लगते हैं और उनकी गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है। इसके अलावा खेत में कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करना भी आसान हो जाता है और फलों की तुड़ाई में कम समय और श्रम लगता है। अच्छी तरह से प्रबंधित सहारा व्यवस्था से फलों का आकार और रंग और गुणवत्ता बेहतर होता है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसलिए लतादार सब्जियों की व्यावसायिक खेती में सहारा देने का उचित प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कृषि तकनीक माना जाता है, जो किसानों को अधिक उपज और बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है। लतादार सब्जियों की खेती में खरपतवार नियंत्रण एक बहुत ही जरूरी कृषि कार्य है, क्योंकि खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक तत्व, सूर्य के प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर इन्हें समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन में कमी आती है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय पौधे छोटे और कमजोर होते हैं और पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। खरपतवार न केवल पौधों की वृद्धि को रोकते हैं, बल्कि कई प्रकार के कीटों और रोगों के आश्रय स्थल के रूप में भी काम करते हैं, जिससे फसल को अतिरिक्त नुकसान पहुंच सकता है। लतादार सब्जियों की खेत में बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए और जरूरत के अनुसार 15 से 20 दिनों के अंतराल पर दूसरी और तीसरी निराई भी करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जिससे जड़ों तक वायु का संचार बेहतर होता है। इसके साथ ही मिट्टी में नमी का संरक्षण भी होता है और पौधों की जड़ें और ज्यादा मजबूत बनती है। बारिश के मौसम में खरपतवारों की वृद्धि ज्यादा होती है, इसीलिए इस मौसम में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। मचान पद्धति अपनाने वाली लतादार सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि बेलों के ऊपर चढ़ जाने से खेत की देखभाल और सफाई में सुविधा होती है। जैविक खेती करने वाले किसान खेत में सूखी घास या पुआल या फिर पत्तियों की मल्चिंग का उपयोग करके भी खरपतवारों की वृद्धि को कम कर सकते हैं। मल्चिंग से न केवल खरपतवार कम उगते हैं, बल्कि मिट्टी में नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है और पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। इस प्रकार समय पर और उचित तरीके से किए गए खरपतवार प्रबंधन लतादार सब्जियों की स्वस्थ वृद्धि, अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो श्रोताओं, इस बातचीत को देते हैं एक छोटा सा विराम और चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक स्थानीय लोकगीत।

வாய் மோசாகிலே வய தகோ.

0: तो श्रोताओं, इस लोकगीत के बाद जारी रखते हैं आज की चर्चा को।
1: अब बातें करते हैं कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। लतादार सब्जियों के खेती में अलग अलग प्रकार के कीट और रोग फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होते हैं। अगर इनका समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए फसल की नियमित निगरानी करना और कीट और रोगों के प्रारंभिक लक्ष्य दिखाई देने पर तुरंत उचित प्रबंधन उपाय अपनाना आवश्यक होता है। स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का उपयोग, खेत की स्वच्छता और संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाने से कई समस्याओं को प्रारंभिक स्तर पर भी रोका जा सकता है। लतादार सब्जियों में फल मक्खी, माहू, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। फल मक्खी फलों में अंडे देती है, जिससे फल सड़ने लगते हैं और उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है।

0: पत्तियों का रंग पीला हरा हो जाता है और उनका आकार विकृत हो जाता है। डाउनी मिल्ड्यू रोग में पत्तियों पर पीले धब्बे बनते हैं जो बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। वही अधिक नमी और जलभराव की स्थिति में जरसड़न की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं। कीट और रोगों की रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाना, खेत को खरपतवार मुक्त रखना, उचित दूरी पर पौधों की बुवाई करना और खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। रोगग्रस्त पौधों और फलों को तुरंत हटाकर नष्ट कर देना चाहिए ताकि संक्रमण अन्य पौधों तक ना फैल सके। नियमित निरीक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन उपायों को अपनाकर लतादार सब्जियों की फसल को कीटों और रोगों से सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त होती है। और अब बातें करते हैं कटाई और उपज। लतादार सब्जियों की खेती में उचित समय पर कटाई या तुराई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे फलों की गुणवत्ता, स्वाद और बाजार मूल्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पर इन सब्जियों की तुराई तब की जाती है जब फल पूरी तरह विकसित हो जाए, लेकिन अभी कोमल और ताजे हो। अधिक देर तक पौधों पर फल लगे रहने से वे कठोर हो सकते हैं, उनका स्वाद कम हो सकता है और बाजार में उनकी मांग भी घट सकती है। इसीलिए किसानों को फलों की परिपक्वता की अवस्था को ध्यान में रखते हुए समय समय पर तुराई करते रहना चाहिए। लतादार सब्जियों जैसे लौकी, करेला, खीरा, तुरई और सेम की तुराई सामान्य तौर पर 2 से 3 दिनों के अंतराल पर की जाती है। नियमित तुराई करने से पौधों में नए फूल और फल बनने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। तुराई करते समय फलों की सावधानीपूर्वक हाथ से या उपयुक्त उपकरण की सहायता से काटना चाहिए ताकि बेलों और अन्य फलों को नुकसान ना पहुंचे। विशेष रूप से मचन पद्धति में उगाई गई फसलों की तुराई करना अधिक आसान और सुविधाजनक होता है। कटाई के बाद फलों को आकार, गुणवत्ता और बाजार की मांग के अनुसार छांट कर अलग किया जाता है। खराब, रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त फलों को अलग कर देना चाहिए ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले फलों का मूल्य प्रभावित ना हो। फलों को साफ और छायादार स्थान पर रखकर पैकिंग और परिवहन करना चाहिए, जिससे उनकी ताजगी और गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। उचित देखभाल, संतुलित पोषक, समय पर सिंचाई और कीट और रोग प्रबंधन अपनाने पर लतादार सब्जियों से किसानों को अच्छी उपज और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार सही समय पर और सावधानीपूर्वक की गई कटाई लतादार सब्जियों की खेती की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: तो श्रोताओं, हमने आपके साथ लतावर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी बांटी। इसी के साथ आज की किसान वाणी को हम यहीं पर समेटना चाहेंगे।
0: लेकिन जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं और कार्यक्रम को आप सुन भी सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी किसान वाणी की अगली कड़ी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं मलेडी
0: और मैं जिदित
1: आप सभी से अनुमति चाहते हैं।
0: नमस्कार।

हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे।

यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि कार्यक्रम किसानवाणी। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है फिल्मी गीतों का। सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म श्रीमान आशिकी का। गाने के बोल लिखे हैं नूर कस्कर और समीर ने, इसे संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दिल का क्या कसूर का। गाने के बोल लिखे हैं अनवर सागर ने और इसे संगीत दिया है नदीम और श्रवण ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विरासत फिल्म का ये गाना हरी हरन की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। समय हो चला है समाचार संध्या का। सुनते हैं हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
2: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
2: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
6: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
7: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
8: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
9: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
1: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे समाचार संध्या। समय हो गया है आपके गीत कार्यक्रम का, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इस कार्यक्रम का सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं, हमारी अधूरी कहानी फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहते हैं जशवा मार, जैक्सन इमैनुअल, मदिक पराग, फिलिमोन बिथेल सिद्धार्थ और एन जावेद। श्रोताओं, ये गीत है अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं। तोहफा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और बेबी कविता की आवाज़ में। ये गाना सुनने की इच्छा रखते हैं वैभव किम्प्राय, दीपा होजय, अरमान दाउदुंग, कापिली दाउदुंग, बर्नाली दाउदुंग, खुनाली दाउदुंग। और आपने रिक्वेस्ट भेजा है हजाब घर वेस्ट कर्बी अंगलों से। चलिए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं मुझसे शादी करोगी फिल्म का ये गाना, सोनू निगम, सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में। इस गीत को रिक्वेस्ट किया है हितेंद्र दास ने, आपने हमें ये रिक्वेस्ट भेजा है, कुदाली नागेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट श्रीभूमि। चलिए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजा है भातापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलल वर्मा ने। आप सुनना चाहते हैं चोर मचाए शोर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत दिया है रविंद्र जैन और गाने के बोल भी रविंद्र जैन ने ही लिखे हैं। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, अगले गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू ने। आपने हमें ये फरमाइश भेजी है पटेल नगर मौलत पंजाब से। आप सुनना चाहते हैं देवदास फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। चलिए आपकी फरमाइश का गीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपके गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जो है चित्रगीत।

0: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं चलिए शुरू करते हैं चित्रगीत कार्यक्रम। सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं दिल मांगे मोर फिल्म का ये गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। गाने के बोल लिखे हैं समीर ने और इसे संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। चलिए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में 1942 लव स्टोरी फिल्म का ये गाना। गाने के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और इसे संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। चलिए सुनते हैं अगला गीत, दम लगा के है शाह फिल्म का ये गाना, पापोन की आवाज में। गाने के बोल लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने और इसे संगीत दिया है अनु मलिक ने। चलिए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म जख्म का। गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीत दिया है MM क्रीम ने। तो चलिए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, आप हमें आकाशवाणी के हाफलंग केंद्र से सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत कार्यक्रम, और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात के 10:25 हो चुके हैं। समय हो गया है आज की दूसरी सभा को यहीं पर समेटने का। आपसे फिर मुलाकात होगी पहली सभा के साथ कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। शुभ रात्रि, जय हिंद।